ये आकाशवाणी सागर है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.6 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के श्रवण माह की 12वीं तिथि, तदनुसार 3 अगस्त सन 2026। इस वक्त सुबह के 5:58 हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रसारण सभा। अपने सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन करते हैं।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान का आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजाम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी। राष्ट्रपति आज कटक में जगतगुरु कृपालू विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। वे कल दक्षिणी ओडिशा में तप्त पानी के पास स्थित माँ कंधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी और उसके बाद अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू होगी। भारत की अध्यक्षता में ये बैठक लचीलापन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता का निर्माण के व्यापक विषय पर आधारित है। ब्रिक्स सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की उम्मीद है। बैठक का उद्देश्य ब्रिक्स संयुक्त सांख्यिकी प्रकाशन के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, सांख्यिकी प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान तथा सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। मतगणना सुबह 8 बजे शुरू होगी। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षाकर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। थलसेना, वायुसेना और नौसेना का 4th युद्ध पाठ्यक्रम आज नई दिल्ली में प्रारंभ हो रहा है। 4 सप्ताह का ये पाठ्यक्रम एकीकृत रक्षा स्टाफ मुख्यालय के तत्वावधान में आयोजित किया जा रहा है। संयुक्त युद्ध अध्ययन केंद्र इसका समन्वय कर रहा है। पाठ्यक्रम में तीनों सेनाओं के अधिकारियों के साथ साथ सरकारी संगठनों, शिक्षाविदों, उद्योग और रणनीतिक विचारकों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पालकी का जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार का प्रतीक है। भगवान महाकाल को चंद्रमौलेश्वर रूप में पारंपरिक पालकी जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का मौका मिलेगा। राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में भव्य समारोह के साथ संपन्न हो गए। समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में 4th स्थान पर रहा। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप कल नई दिल्ली में संपन्न हो गई। मेजबान भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 7 में से 6 स्वर्ण पदक जीते। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विजेता खिलाड़ियों को पदक और

0: पुरस्कार प्रदान किए और उनके प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि 25 राष्ट्रमंडल देशों की भागीदारी वाली खेल प्रतियोगिता की सफल मेजबानी दिल्ली सरकार के लिए गौरव की बात है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी सागर आपकी सेवा में है। सुबह के 6:05 हुए हैं। श्रोताओं, ये समय अर्चना कार्यक्रम का है। आइए इसकी शुरुआत करते हैं समूह स्वर में इस मातृ वंदना के साथ।

अभी आप सुन रहे थे अनुराधा पौडवाल और साथियों को, और आइए अब फाल्गुनी पाठक की आवाज में सुनते हैं ये भजन।

श्रोताओ, अभी आप अर्चना कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी सागर है। 6:25 हुए हैं। समय है कार्यक्रम विवरण का। आपको बताना चाहेंगे 6:30 पर। जी हाँ, ये वक्त आपका जाना पहचाना है। आप सुनेंगे श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। कुछ पुराने फिल्मी गीत होंगे। कार्यक्रम भूले बिसरे गीत में सुबह 6:40 पर। 7 का वक्त सुबह सुबह कार्यक्रम का 7:05 पर सुनिएगा कृषि संकेत। मन चाहे गीत सुबह 7:20 पर और संगीत सरिता लेकर आएंगे सुबह 7:45 पर। लोक संगीत का आनंद लीजिएगा सुबह 8:15 पर। बिंदिया कार्यक्रम आज सुबह 8:30 हमारे श्रोता सुन सकते हैं। 9:50 का वक्त रहेगा प्रायोजित कार्यक्रम मन उपचार सुखी संसार का। फोन करें, लोकगीत सुने कार्यक्रम सुबह 10:05 पर होगा। 11 होगा NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग युववाणी। ये कार्यक्रम श्रोता सुनेंगे शाम 5:02 पर। 5:30 संगीत सरिता सुनिएगा। कुछ सदाबहार गीतों की सौगात शाम 6:30 पर। शाम 6:45 और 7:20 पर श्रोता लोकरंग कार्यक्रम सुनेंगे। रात्रि 8:00 संसद समीक्षा और 8:15 पर आप सुनेंगे चित्रपट संगीत।

0: हेलो माँ। माँ तुम्हारी बहुत याद आती है, और याद आती है बुंदेली माटी की वो सौंधी सौंधी खुशबू। सच आप लोगों को बहुत मिस करता हूँ मैं।
1: बेटा अब यहाँ की बातों को तू इतना ज्यादा मिस करना बंद कर और तुरंत अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर News on AIR।
0: News on AIR?
1: हाँ बेटा, ये एक ऐसा ऐप है जिसमें तुझे दुनिया के किसी भी कोने में अपनी बुंदेली माटी की खुशबू की कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि इस ऐप पर तू सुन सकेगा आकाशवाणी सागर का प्रसारण।
0: अरे वाह माँ, कमाल है।
1: News on AIR।
2: बढ़ेगा आपका व्यापार, आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर एक बार फिर सुने 9770432297।
1: मन चाहे गीत श्रोता सुनेंगे रात्रि 9 बजे भी। संसद में प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण रात्रि 10 बजे किया जाएगा। 11 बजे हिंदी में समाचार और 11:05 पर होंगे अंग्रेजी में समाचार।

ये आकाशवाणी सागर है। 6:30 हुए हैं, आइए सुने श्री रामचरितमानस से संगीतमय पाठ। आज आप इसकी 68वीं कड़ी सुनेंगे, जिसमें मुख्य गायक स्वर बशीर अहमद और रविंद्र साठे के हैं।

एक बार सभा में बैठे हुए महाबली रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। राक्षसों की संख्या और जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। सभी राक्षस माया जानते थे और मनमाना रूप बना सकते थे। वे देवताओं को अपना शत्रु मानते थे। रावण ने सोचा, चूंकि ऋषि मुनि तथा देवगण ऐसे शत्रु हैं जो सामने आकर युद्ध नहीं करते और शत्रु को देखते ही भाग खड़े होते हैं, अतः उन्हें मारने का एक ही उपाय है और वो है ब्राह्मण भोजन, जिससे उन्हें बल मिलता है, यज्ञ, हवन, तप, श्राद्ध आदि में बाधा डालना। उसने अपने बेटे मेघनाथ को आदेश दिया कि वो रण में धीर और बलवान सिद्ध देवताओं को युद्ध में जीतकर बांध लाए। वो स्वयं भी गदा लेकर निकल पड़ा, जिससे समस्त पृथ्वी डगमगाने लगी। सभी दिक्पाल अपना अपना स्थान छोड़कर भाग निकले। रण के मद में मतवाला रावण अपनी जोड़ी का योद्धा जगत भर में दौड़ता खोजता फिरा, किंतु उसे वैसा योद्धा कहीं नहीं मिला। वो सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल, यमराज जैसे अधिकारियों तथा किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, नाग आदि जीवधारियों के हठपूर्वक पीछे पड़ गया। सृष्टि में जहां तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी उसके अधीन हो गए। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा अन्य सुंदरी स्त्रियों को जीतकर उनसे विवाह कर लिया। कहीं भी शुभ आचरण नहीं होने पाता था। यज्ञ, तप, ज्ञान आदि सभी के मार्ग बंद हो गए। राक्षसों का ऐसा अत्याचार फैला जिसका वर्णन कठिन है। इस प्रकार धर्म के प्रति अतिशय ग्लानी और अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गई।

अभी आप श्री रामचरित मानस से संगीत में पाठ सुन रहे थे। ये आकाशवाणी सागर है। सुबह के 6:40 हुए हैं। आइए सुनते हैं कुछ पुराने फिल्मी गीत। सबसे पहले ये गीत फिल्म CID से।

0: जीएसटी काउंसिल ने टैक्स को और भी सरल बना दिया है। सरकार ने सीमेंट पर जीएसटी की दर 28% से घटाकर 18% कर दिया है। टैक्स में कमी से आवासीय और व्यावसायिक प्रोजेक्ट पर लागत का दबाव कम होने की संभावना है। इसी तरह संगमरमर और ट्रावर्टीन ब्लॉकों पर टैक्स की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है, जबकि ग्रेनाइट ब्लॉकों पर भी पहले के 12% की तुलना में अब केवल 5% जीएसटी लगेगा। इसके साथ ही रेत चूने की ईंटों और पत्थर की जड़ाई के काम पर भी कर की दर 12% से घटाकर 5% कर दी गई है।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। फोन करें, लोकगीत सुने कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग आज यानी सोमवार शाम 4 बजे से की जाएगी। हमारा फोन नंबर है 240-845 और सागर का एसटीडी कोड 0-75-82। सूचना समाप्त हुई। आइए चले अगले गीत की तरफ। अगला गीत फिल्म बैजू बावरा से है। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज है, शकील बदायूनी के बोल है और नौशाद का ये संगीत है।

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए आरबीआई कहता है
2: जानकार बनिए सतर्क रहिए
3: शोला और शबनम इस फिल्म में आइए सुने लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत जिसे कैफी आजमी ने लिखा और खयाम ने इसके लिए संगीत तैयार किया

अभी आप सुन रहे थे कुछ पुराने फिल्मी गीत कार्यक्रम भोले बिस्कुट के गीत में। अब थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार हमारे दिल्ली के।

0: है कार्यक्रम सुबह सुबह का। इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं साहिबा। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। श्रोताओं, आज सुबह सुबह की शुरुआत एक गजल की दो पंक्तियों के साथ। कहिए तो आसमां को जमीन पर उतार लाए, कहिए तो आसमां को जमीन पर उतार लाए, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। जी हाँ श्रोताओं, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से कभी बड़ा नहीं होता। कहते हैं ना, हारा वही है जो लड़ा नहीं है। ये बात बहुत ही प्रेरणादायक है, एक सूक्ति है, जानी मानी है। ये दर्शाती है कि दृढ़ इच्छा शक्ति और साहस से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। कभी हार होती ही नहीं है यदि हमने खुद हार ना मानी हो। हार वास्तव में संघर्ष छोड़ने वालों की ही होती है, ना कि हारने वाले की, क्योंकि जीतने और हारने दोनों से ही प्रेरणा मिलती है। हारने से ऐसी प्रेरणा मिलती है जो संघर्ष जारी रखने और चुनौतियों का सामना करने की हमें शक्ति देती है। हमें अपने लक्ष्य पर दृष्टि बनाए रखनी होती है। लक्ष्य वो चीज है जो इस संसार में बहुत सारे लोगों के पास है, लेकिन बहुत सारों के पास नहीं है। और जिनके पास लक्ष्य है, उनमें से भी कुछ लोगों के लक्ष्य केवल उनके दिमाग में है, क्योंकि वो लोग अपने लक्ष्य के बारे में ना कभी बात करते हैं, ना जीवन भर कहीं लिखते हैं, ना किसी को बताते हैं। और कई बार वो अपने लक्ष्य को लेकर खुद ही इतने चिंतित से रहते हैं कि कहीं दुनिया उनका मजाक ना उड़ा दे। वो इस डर से अपना लक्ष्य किसी से साझा ही नहीं करते। कभी कभी खुद पर भरोसे की कमी की वजह से वो अपने लक्ष्य को अंदर छिपा कर रखते हैं। मगर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भली भांति जानते हैं कि उनके लक्ष्य क्या हैं। वो उसके बारे में लिखते हैं, वो दूसरों के बीच में बैठकर ये बात बताते हैं कि हमारा लक्ष्य ये है। वो बताते हैं कि उन्हें जीवन में ये पाना है, कैसे पाना है, ये लक्ष्य उनको कब तक साध लेना है। और ऐसे लोग ही, यकीन मानिए, दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाते हैं। वो और लोगों को भी सिखा देते हैं कि कैसे लक्ष्य निर्धारित कर, प्रयास कर, उस लक्ष्य को बड़ी आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। ये नहीं कहा जा सकता कि किसी भी लक्ष्य को पाना, उस सफर पर चलना, ये बहुत सरल होगा। हमेशा सरलता से ही सफलता मिल जाएगी, ये तो बहुत ही कम देखा गया है। इसलिए जब संघर्ष बड़ा हो, मुश्किल हो, तो समझ जाइए कि सफलता निश्चित है। क्योंकि लक्ष्य को जब पाना होता है तो थोड़ा मुश्किल मार्ग होता है जिस पर हमें चलना होता है। अपने ऊपर हमें विश्वास कायम रखना होता है, और हमें ये भी याद रखना होता है कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती है। जी हाँ श्रोताओं, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन ये भी याद रखना होता है कि सफलता एक दिन ज़रूर मिलती है। तो इस उम्मीद के साथ जब हम अपने लक्ष्य को साधते हैं कि एक ना एक दिन हमें सफलता ज़रूर मिलेगी, तो सफलता हमसे दूर जा ही नहीं सकती। आज सुबह सुबह बस इतना ही। इजाजत दीजिए साहिबा को इस कार्यक्रम से, लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी सागर के कार्यक्रम, क्योंकि अब आप सुनने वाले हैं कृषि संकेत। कृषि चर्चा पर आधारित है हमारा ये कार्यक्रम। भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाएं, इस विषय पर केंद्रित है आज का ये अंक, और हमारे विशेषज्ञ हैं विपिन जैन। आइए सुनते हैं।
1: अपना भारत है कृषि प्रधान देश है, और जो अपनी अर्थव्यवस्था है वो कृषि पे ही आधारित है। बिना खेती के भारत अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती। तो कृषि क्षेत्र में जो है, अभी वर्तमान में आप देखेंगे तो पीएम किसान सम्मान निधि
2: जी,
1: जो किसानों को सीधा लाभ पहुंचाती है, किसान भाइयों के खाते में हर वर्ष 6,000 रुपए सीधे बैंक खाते में पहुंचते हैं, जिसके द्वारा किसान भाइयों को कुछ आर्थिक मदद मिलती है। इसके बाद लगातार जो चल रही है फसल बीमा योजना, ये फसल के लिए मुख्य आधार है। यदि किसान भाई अपना फसल बीमा करवा लेते हैं तो इसके द्वारा भी एक सुरक्षा की गारंटी किसान भाइयों को मिलती है। इसके बाद MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य है, किसान भाइयों को MSP के द्वारा मिलता है, उसके लिए सरकार प्रयास करती है। इसके बाद बात आती है किसान क्रेडिट कार्ड की। किसान क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही अच्छा साधन है, क्योंकि पहले जो किसान भाई के पास पूंजी नहीं रहती थी तो वो व्यापारिया आड़तिया साहूकारों से लेते थे, जिससे बहुत ज्यादा महंगे रेटों में उनके लिए ऋण प्राप्त होता था। लेकिन किसान क्रेडिट कार्ड के द्वारा न्यूनतम रेट पे उनको पैसा प्राप्त हो जाता है। इसके बाद नई तकनीक एवं नवाचार की बात करें तो PM कुसुम योजना है। इस योजना के अंतर्गत सौर ऊर्जा को बढ़ावा मिला है। साथ ही साथ आप देखें कि जो पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का या और भी उर्वरकों का प्रयोग होता है तो पहले किसान भाई छोटे पंपों से करते थे, लेकिन अब जो नमो ड्रोन दीदी योजना निकली है, आप देखेंगे कि ड्रोन के द्वारा आप उर्वरकों का और अन्य पेस्टिसाइड खरपतवार नाशक के लिए जो काम घंटों में होते थे वो मिनटों में ड्रोन के द्वारा छिड़काव होने लगा है, कम समय में, और बहुत अधिक क्षेत्र में आप देखेंगे व्यापक रूप से एक समान रूप से ड्रोन के द्वारा आप छिड़काव हो रहा है। और साथ में देखेंगे कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड की कौन सा पोषक तत्व कितना है, ये जानकारी मिल जाती है। और अब एक और नाम जुड़ गया है, E-नाम। इसमें जो मंडियों को डिजिटलाइज किया जा रहा है, इसमें अधिक से अधिक व्यापारी ऑनलाइन जुड़ सकते हैं। और साथ में आप देखेंगे किसी मैपर में लगातार जो शासन की योजनाएं चल रही हैं, कहां कितने प्रदर्शन दिए गए हैं, किस किसान को दिया है, वो प्रदर्शन लगाया गया है तो उसमें शुरुआत बुवाई से लेकर कटाई तक उसकी जो ग्रोथ है वो डिजिटल रूप से सैटेलाइट द्वारा ली जाती है और उसका पूरा ऑनलाइन रिकॉर्ड भविष्य के लिए संधारित होता है कि जो प्रदर्शन लगाए गए थे तो उसका क्या परिणाम है। ये नई नई टेक्नोलॉजी और बहुत सारी योजनाओं के द्वारा लगातार 12 वर्षों में बहुत अच्छे कार्य हुए हैं।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही।
0: अभी आप कृषि संकेत का ये अंक सुन रहे थे। भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाएं, विशेषज्ञ विपिन जैन थे। FM बैंड पर ये आकाशवाणी सागर है।
2: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
3: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर

का व्यापार। आकाशवाणी सागर से करिए प्रचार, हर घर तक अपनी सेवा और सामान का करें प्रसार। आकाशवाणी सागर से विज्ञापन देने के लिए व्हाट्सएप करें 9770432297 पर। नंबर

आकाशवाणी सागर आपकी सेवा में है। श्रोताओं, थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसका अनुप्रसारण हमारे भोपाल केंद्र से किया जाएगा। आइए प्रादेशिक समाचारों के लिए कुछ देर प्रतीक्षा करते हैं।

0: नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। सबसे पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, नशा मुक्त युवा से ही बनेगा विकसित भारत। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में उपस्थित नागरिकों को नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त मध्य प्रदेश का संकल्प दिलाया। दतिया विधानसभा उपचुनाव की आज मतगणना, नतीजों से ठीक पहले कांग्रेस ने पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को पार्टी से किया बाहर। और उज्जैन में आज निकलेगी बाबा महाकाल की पहली सवारी, चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में भक्तों को देंगे दर्शन। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नशा मुक्त युवा के लिए विकसित भारत संकल्प अभियान के शुभारंभ पर देश भर के युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का सपना पूरा करने के लिए युवाओं का तन मन से स्वस्थ रहना और नशे से दूर रहना जरूरी है। प्रधानमंत्री ने बताया कि इस अभियान का पायलट प्रोजेक्ट पिछले साल काशी से शुरू हुआ था और अब यह राष्ट्रीय आंदोलन बन गया है। उन्होंने कहा कि यह संकल्प अगले 100 दिन तक लगातार चलेगा और हर रविवार जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
1: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं, जिसकी जरूरत हो उसका सहयोग मांगे, मन खोल करके उससे बात करें, जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नशा मुक्त युवा के लिए विकसित भारत संकल्प अभियान के शुभारंभ पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल के बैरट में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से हिस्सा लिया। उन्होंने प्रधानमंत्री का संबोधन सुना और उपस्थित युवाओं तथा नागरिकों को नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त मध्य प्रदेश का संकल्प दिलाया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिन के ओडिशा दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजाम जिले के तप्त पानी में कई शैक्षणिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी। राष्ट्रपति आज कटक में जगतगुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अगले दिन वे दक्षिणी ओडिशा के तप्त पानी स्थित मां कंधुनी देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद अन्य सरकारी कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि बैरसिया में सांदीपनी विद्यालय का लोकार्पण शिक्षा के नए युग की शुरुआत है। मुख्यमंत्री कल बैरसिया में इस विद्यालय के लोकार्पण समारोह को संबोधित कर रहे थे। 35 एकड़ में बना यह विद्यालय करीब 50 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सांदीपनी विद्यालय गरीब और अमीर के बीच शिक्षा की असमानता खत्म करने की दिशा में सरकार का बड़ा प्रयास है। उन्होंने बैरसिया क्षेत्र के विकास के लिए भोपाल बैरसिया मार्ग को 4 लेन बनाने की भी घोषणा की। श्री यादव ने कहा,
2: इस विद्यालय का लोकार्पण ये नए इतिहास का गढ़ना प्रारंभ हुआ, एक बहुत बड़ा नया संकल्प का सूत्रपात। आज देश बदल रहा, अन्यथा नौकरी की बात करो, अकेले इस मध्य प्रदेश के अंदर सारी नौकरी जोड़ लो तो वो केवल 10 लाख के अंदर नौकरियां हैं। जिनको नौकरी की इच्छा वो जरूर करे, लेकिन अब भारत और मध्य प्रदेश नौकरी पाने वाला नहीं, नौकरी देने वाले नई पीढ़ी तैयार कर रहा। आपके माध्यम से स्वरोजगार और रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे।
0: दतिया विधानसभा उपचुनाव की मतगणना आज शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में होगी। मतगणना सुबह 8 बजे तक डाकपत्रों से शुरू होगी, जबकि 8:30 बजे से ईवीएम के वोटों की गिनती की जाएगी। इसके लिए 20 काउंटिंग टेबल लगाए गए हैं और करीब 350 अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। वहीं दूसरी तरफ उपचुनाव के नतीजों से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी ने पूर्व विधायक राजेंद्र भारती को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी घनश्याम सिंह लगातार राजेंद्र भारती पर चुनावों में बितरघात करने का आरोप लगा रहे थे। उज्जैन में भगवान महाकालेश्वर की श्रावण भाद्रपद सवारी के तहत आज पहली सवारी निकलेगी। इस दौरान बाबा महाकाल

0: चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण करेंगे। सवारी दोपहर 3:30 बजे, पूजन के बाद शाम 4 बजे मंदिर से शुरू होगी और रामघाट पहुंचकर शिप्रा नदी से जलाभिषेक के बाद शाम 7 बजे तक मंदिर वापस लौटेगी। मंदिर प्रशासन प्रथम कौशिक ने बताया है कि श्रद्धालुओं के लिए चलित आरती दर्शन की व्यवस्था की गई है और 15 जगहों पर मेडिकल टीमें तैनात की गई हैं। समाचारों में वक्त है ब्रेक का।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं।
0: ब्रेकिबल समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। अब बात अच्छी खबर की। खरगोन जिले की प्रसिद्ध निमाड़ी लाल मिर्च को जीआई टैग मिल गया है। ऐसे मिर्च को कानूनी संरक्षण, वैश्विक पहचान और किसानों को बेहतर दाम और निर्यात के नए अवसर मिलेंगे। इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे खरगोन संवाददाता आशुतोष पुरोहित।
2: कि जिले की प्रसिद्ध निमाड़ी लाल मिर्च को जीआई टैग मिल गया है। वर्षों से अपने तीखे स्वाद, गहरे लाल रंग, उत्कृष्ट गुणवत्ता के लिए पहचान रखने वाली निमाड़ी लाल मिर्च अब राष्ट्रीय स्तर ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाएगी। जीआई टैग मिलने से खरगोन की लाल मिर्च को कानूनी संरक्षण मिलेगा, नकली उत्पादों पर रोक लगेगी और किसानों को बेहतर दाम के साथ ही निर्यात के नए अवसर भी प्राप्त होंगे। हमारे साथ प्रदेश के पूर्व कृषि मंत्री, खरगोन के विधायक बालकृष्ण पाटीदार मौजूद है।
3: एक जिला उत्पाद के तहत मिर्च को एक खरगोन के लिए रखा है, तो इसको जीआई टैग मिलने से और इसको निर्यात के बहुत इसके लिए रास्ते खुलेंगे। पूरे विश्व के अनेक देशों में इसका निर्यात भी होगा और इससे किसानों को भी बहुत लाभ होगा और साथ ही इसके लिए उद्योग भी लगेंगे।
2: इधर उद्यानिकी विभाग के उप संचालक के गिरवाल का भी मानना है।
4: हमारे जिले की मिर्च, लाल मिर्च को एक नई पहचान मिली है। इसकी पहचान बढ़ने से इसका मूल्य जरूर बढ़ेगा, यहाँ पर बाहर से भी खरीदार आएंगे।
2: जीआई टैग खरगोन की लाल मिर्च की पहचान का नया अध्याय है। यह सम्मान न केवल खरगोन की पहचान को नई ऊंचाई देगा बल्कि हजारों किसानों की मेहनत को उसका वास्तविक मूल दिलाने की दिशा में भी अहम साबित होगा। मैं खरगोन से आशुतोष पुरोहित।
0: प्रदेश में विभिन्न जिलों की पुलिस ने पिछले 3 हफ्तों में बड़ी कार्रवाई करते हुए 116 चोरी की मोटरसाइकिलें, 4 ट्रैक्टर, 1 पिकअप और 1 कार जब्त की है। सिंगरौली, गुना, मंदसौर और ग्वालियर सहित कई जिलों में भी पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई कर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। वहीं दूसरी ओर प्रदेश में स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स ने एक बड़ी अंतर्राज्यीय तेंदुआ शिकार और वन्यजीव तस्करी गिरोह का भी पर्दाफाश किया है। श्योपुर मुरैना क्षेत्र से 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। ग्लासगो में कल रात राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हो गया। इसके साथ ही 2030 में अहमदाबाद में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों की उल्टी गिनती भी आधिकारिक तौर पर शुरू हो गई है। समापन समारोह में भारत ने दुनिया को अहमदाबाद आने का न्योता दिया। भारतीय एथलीटों ने इन खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक जीते और पदक तालिका में 4था स्थान हासिल किया। और अब बात मौसम की। प्रदेश में अब तक औसतन 15.5 इंच बारिश हो चुकी है, जो तय कोटे की आधी भी नहीं है। भोपाल, ग्वालियर, उज्जैन, जबलपुर सहित 42 जिलों में सामान्य से कम पानी गिरा है। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अब तक 15% कम बारिश दर्ज हुई है। अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का कोई अलर्ट नहीं है। धार जिले में आज शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में दिन के 11 बजे रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। खंडवा में हरफनमौला कलाकार किशोर कुमार के जन्मदिन के अवसर पर 4 अगस्त तक 3 दिवसीय खंडवा गौरव दिवस कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। विकसित भारत के लिए युवा संकल्प अभियान के तहत आगरमालवा जिले में कल आयोजित कार्यक्रम में शासकीय विद्यालयों के 300 से अधिक युवाओं ने सहभागिता की। नर्मदापुरम में भिलाड़िया घाट से कांवरिये नर्मदा जल लेकर सिवनी मालवा होते हुए आज तिलक सिंदूर पहुंचेंगे। अशोकनगर में कल श्री शिवटूरिया और ट्रेंचिंग ग्राउंड परिसर में 2100 पौधे लगाए गए। जिला रोजगार कार्यालय इंदौर में आज आईटीआई में 1 दिवसीय युवा संगम रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है। माय भारत द्वारा संचालित नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत कल ग्वालियर के लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षण संस्थान में कार्यक्रम आयोजित किया। जबलपुर में नशा मुक्त भारत विकसित अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। डिंडौरी में पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा जिले के विभिन्न विकास खंडों में शिविर आयोजित किए गए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन दोपहर 2:10 पर। दीजिए इजाजत। नमस्कार।

आकाशवाणी सागर आपकी सेवा में है। श्रोताओं, 7:20 हुए हैं। ये वक्त मन चाहे गीत कार्यक्रम का है। इस कार्यक्रम में आपके साथ हूँ मैं साहिबा। स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार। पहला गीत फिल्म नीलकमल से मोहम्मद रफ़ी का गाया हुआ ये गीत है। साहिर लुधियानवी ने इसको लिखा है, रवि ने संगीतबद्ध किया है और हमारे इन तमाम श्रोताओं ने इस गीत को सुनना चाहा है। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकैस्ट्रो, रोजी डिकैस्ट्रो, पर्ल और विलिस, ग्राम बाघामुड़ा कुमाखाना छत्तीसगढ़ से प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी देवांगन, प्रकाश और यहीं से गायत्री, यशवर्धन, यशस्वी देवांगन, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून और साथ में सुमित रमेश साहू, डुमराव बिहार से डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीबा और दानिश अंसारी, गोला बाजार बक्सर से श्रद्धानंद आर्य, परमानंद आर्य और पंकज प्रमोद, सारिमपुर बक्सर से एस डी अंसारी और इकबाल मस्तान और उनके परिवारजन। आइए सुने आप सबकी पसंद का ये गीत।

0: मुझे भी चाहिए कपड़ों में ऐसी सफेदी और चमक।
1: तो मिलेगी ना।
0: पर कैसे?
1: नए एडवांस फार्मूले और नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर, कपड़ों की चमक लौट आए, कपड़े खिल जाएं। आज ही लाइए असरदार नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर।
2: आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाज नक्श लालपुरी के बोल खय्याम का संगीत है इस गीत के लिए, जो है फिल्म दर्द से। सुनना चाहते हैं आप सब। टाउनशिप सेक्टर 8 भिलाई नगर छत्तीसगढ़ से अशोक श्याम कुमार, प्रमिला श्याम कुमार, चीनू आसमा, दीपक श्याम कुमार और अनुश्री। बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन लाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिम्पल, बाबू प्रियांश कुमारी, भाव्या देवांगन। कोल सिटी बरका काना से अफजल ताज, शाहीन सुल्ताना, सोनू, तस्नीम, निप्पी सहानी, मोहम्मद अफजल मलिक। मेघापारा लोरमी छत्तीसगढ़ से रामकुशल पटेल, संतोषी पटेल, दीपांशु पटेल, दिव्या, दीपांजलि, दीपक टेकलाल पटेल। वर्णा शाहपुर कोल्हापुर महाराष्ट्र से विजय चौहान इंदूरकर, तेजस्विनी चौहान, माई इंदूरकर, बेबी शौर्या, श्रेयस, अंकिता, अनिकेत चौहान। किबलेगांव पुणे से अंकिता कांबले, सेदा पुरकर, विजय कांबले, बेबी शौर्या, श्रेयस। मेन बाजार कुंडलवाड़ी महाराष्ट्र से गंगाधर येमेकर, प्रमोद येमेकर, प्रदीप येमेकर। यह है आपकी पसंद का गाना।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: गोरा और काला, यह है फिल्म का नाम, जिससे अगला गीत अब आप सुनेंगे। लता मंगेशकर और मुकेश का गाया हुआ आनंद बख्शी की गीत रचना है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने इस गीत को संगीत से सजाया है। हमारे इन श्रोताओं का अनुरोध

हम तक पहुंचा है। भंवरपुर छत्तीसगढ़ से राधेश्याम, देवांगन, चंपा, राजू, नेहा और जगदीश। मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, ओम कुमार। ग्राम पजौनिया, जिला जालौन, उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श, सार्थक, अलौकिक चंसौलिया। चौटाला हरियाणा से दारा पंडित, संजय शर्मा, प्रियंका। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जसवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप। कालका से ये है शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। आदर्श नगर मलोट पंजाब से राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैंडी शर्मा, सौरभ, साइना और निवान शर्मा। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरफराज फरदीन, सुहान अरसान, अबान और अब्बासी परिवार के तमाम लोग। गुजराती बाजार सागर से राजेश मनवानी, शंकर सचदेव, अनिल गंगवानी, सपना मनवानी, चंपक भाई जैन, निर्मल भोले बजाज, रूपेश मनवानी। और सिंधी कॉलोनी से हैं सीमा, महक, अंजलि, भूमि, बरखा और प्रियंका। आइए सुनते हैं आप सबकी पसंद पर ये गीत।

0: बात बन जाए
1: 287 मेरी चाय। आप तो ऐसे ना थे, इस फिल्म से है अगला गाना। हेमलता की आवाज़, निजा फाजली के बोल, उषा खन्ना का संगीत इस गीत के लिए, जिसके लिए फरमाइश हमें मिली आपकी तरफ से। ये है नेहरू चौक पैठड़ से डॉक्टर सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल, बेबी सिया। जालना शहर से अनुरोध करता है सोमनाथ जाधव, गीता, ओम जाधव, सुभाष, चंदन, एकनाथ और संगीता जाधव। ग्राम बेर खेड़ी, जिला सागर, मध्य प्रदेश से प्रगति ठाकुर, अंगद ठाकुर, पुष्पा, वेदांश और विकास ठाकुर। मोताला महाराष्ट्र से विजय रतन और उनके परिवार के लोग। राजकोट गुजरात से रश्मि झरना, भरत कुमार। चितलवाड़ी अकोला से अमोल इंगले, अर्चना इंगले, सर्वेश इंगले और अधीरा इंगले। गांव ढोडरी घोटिया, जिला मोहल्ला मानपुर से महेश कुमार निषाद, रंबा रानी निषाद, निखिल कुमार, नैतिक कुमार, कुमारी पुष्पांजलि और स्वप्निल कुमार निषाद। आइए सुने आप सबकी फरमाइश पर ये गाना।

0: मुझे भी चाहिए कपड़ों में ऐसी सफेदी और चमक।
1: तो मिलेगी ना।
0: पर कैसे?
1: नए एडवांस फार्मूले और नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर, कपड़ों की चमक लौट आए, कपड़े खिल जाएं। आज ही लाइए असरदार नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर।
2: श्रोताओं, कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। फोन करें लोकगीत सुने कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग सोमवार यानी आज शाम 4 बजे से की जाएगी। हमारा फोन नंबर है 240-845 और सागर का एसटीडी कोड है 0-75-82। सूचना समाप्त हुई। चलते हैं इस गीत की ओर, जो है प्रोग्राम का आखिरी गीत। हसीना मान जाएगी फिल्म से ये गाना, जिसे मोहम्मद रफ़ी ने आवाज़ दी, अख्तर रोमानी ने लिखा, कल्याण जी आनंद जी ने संगीतबद्ध किया और हमारे इन श्रोताओं ने सुनना चाहा। पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू, सीमा साहू, ग्राम बुड़वा पथरिया छत्तीसगढ़ से नरेन नेताम, कुसुम नेताम, सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से यशमीत, यशु, निरंजन सिंह, सौम्या सिंह और अविरल सिंह, मारहरा दरवाज़ा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनवाज अब्बासी, नवेद, सुहेल, अनम, रशीद और साथ में ये हैं सिद्धपुरा टाउन से जुबैर अली खां, सबीहा अंजुम खान, जमशेदपुर झारखंड से सुपाही साही गांव से आपने लिखा, देवेंद्र ताती, राकेश ताती, प्रकाश, निशा, रेशमा, दीपाली और देवेन, नागपुर महाराष्ट्र से कमल सहानी, पिंकी सहानी, डॉक्टर अफजल मलिक, संदीप मक्कड़, बेगम इफ़ज़ाल, रामगढ़ कैंट झारखंड से निप्पी सहानी और सुनीता सहानी। आप सबका अनुरोध कर रहे हैं पूरा।

अभी आप सुन रहे थे मन चाहे गीत कार्यक्रम, ये आकाशवाणी सागर है। समय हुआ है संगीत सरिता का। आइए आगाज करें जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाज में इस गजल के साथ।

जीएसटी से जुड़ी नई खबर ने आम लोगों और निवेशकों दोनों को राहत दी है। सबसे बड़ी राहत खाने पीने के सामान पर दी गई है। ब्रेड, रोटी और छेना पनीर पर

0: अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। इसके अलावा 33 जरूरी दवाइयों के दाम कम कर दिए गए हैं, जिससे इलाज का खर्च भी घटेगा। लाइफ इंश्योरेंस पर भी पूरी तरह जीएसटी छूट दी गई है, जिससे पॉलिसी खरीदना अब और सस्ता हो जाएगा। छोटी कारों और 350 सीसी तक की बाइक पर जीएसटी 28% से घटाकर 18% कर दिया गया है। इसका मतलब है कि गाड़ी या बाइक खरीदने का सपना अब पहले से सस्ता हो सकता है।
1: और आइए अब सुनते हैं गुलजार के ये बोल, आवाज एक बार फिर जगजीत सिंह की।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: और अब आप तक पहुंचा रहे हैं पंकज उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज में कार्यक्रम के आखिर में ये पेशकश।

अभी श्रोता संगीत सरिता कार्यक्रम सुन रहे थे। आपको बताते चले, फोन करें, लोकगीत सुने। कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग सोमवार यानी आज शाम 4 बजे से की जाएगी। श्रोताओं, हमारा फोन नंबर 240-845 और एसटीडी कोड है 075-82। ये आकाशवाणी है, आप इस वक्त सुन रहे हैं आकाशवाणी सागर के कार्यक्रम। 8 बजने को है, थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से। आइए इंतजार करें।

0: यार सच बताऊं, अभी तो गर्मियां शुरू हुई है और 7-7 हजार रुपए का बिजली बिल भी आने लगा। वाइफ कब से बोल रही है सोलर पैनल लगवाने के लिए, बोलती है सरकार सब्सिडी भी दे रही है। मैंने जिनको पूछा सबका बिजली बिल जीरो आ रहा है, इस बार तो लगवा ही देता हूँ। जब बिजली मुफ्त मिलती है तो ले क्यों नहीं रहे भाई, आप भी लगवा ही दो। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार,

0: आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। कहा, विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज से लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोग मारे गए और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत विकसित राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है और इसके लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है। श्री मोदी ने कल नई दिल्ली में वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प के लिए नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया। 100 सप्ताह के इस जन भागीदारी अभियान के दौरान देशभर में हर रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशे की लत लोगों को लक्ष्य से भटका देती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से 3 दिवसीय ओडिशा दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे कटक, भुवनेश्वर, ब्रह्मपुर और गंजम जिले के तप्तपानी में कई शैक्षिक, सांस्कृतिक और आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग लेंगी।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम को कटक के पास बनारा में जगत गुरु कृपालु विश्वविद्यालय का उद्घाटन करेंगी। कल राष्ट्रपति भुवनेश्वर से ब्रह्मपुर तक एक विशेष ट्रेन से यात्रा करेंगी और फिर सड़क मार्ग से गंजाम जिले के तप्तपानी जाएंगी, जहां वो मां कांधुनी देवी मंदिर और शिव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। वो रात में गोलाबंधा स्थित आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज में रुकेंगी। भुवनेश्वर और कटक में पुलिस की लगभग 40 प्लाटून तैनात करके सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। राष्ट्रपति की यात्रा के दौरान निर्धारित स्थलों के ऊपर नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना शुरू हो गई है। पहले डाक मतपत्रों की गिनती की जा रही है, उसके बाद 8:30 बजे से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में दर्ज वोटों की गिनती शुरू होगी। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में 30 जुलाई को मतदान हुआ था। लोकसभा में आज सर्वोच्च न्यायालय, न्यायाधीशों की संख्या, संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा होने की संभावना है। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल इस विधेयक को पेश कर सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन बैंककार बही साक्ष्य विधेयक 2026 पेश कर सकती हैं। इसका उद्देश्य बैंकों के रिकॉर्ड से जुड़े सबूतों के लिए कानून बनाना और इसे आजकल के डिजिटल बैंकिंग तौर तरीकों के अनुरूप बनाना है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026 पेश करेंगे। वहीं राज्यसभा में आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
1: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की 2 दिन की बैठक आज से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में शुरू हो रही है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के सदस्य देशों ब्राजील, रूस, चीन, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिनिधियों के इस बैठक में भाग लेने की संभावना है।
2: इस वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। ब्रिक्स सांख्यिकी ट्रैक के अंतर्गत भारत ने परिवर्तन के प्रेरक के रूप में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी इस विषय को अपनाया है। इसका उद्देश्य ब्रिक्स के माध्यम से सांख्यिकी के प्रसार, प्रणालियों में नवाचार और ज्ञान एवं सर्वोत्तम परिपाटियों के आदान प्रदान के क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करना है। बैठक में सांख्यिकी उत्पादों को मजबूत करने, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों में सुधार, डेटा की पहुंच बढ़ाने और आर्थिक व क्षेत्रीय सांख्यिकी को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही विकसित होते डेटा पारिस्थितिकी तंत्र में एआई की तैयारी विषय पर 2 विशेष सह कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ बातचीत आज होगी। ये बातचीत मध्यस्थों के जरिए होने की उम्मीद है। एयरफोर्स वन में पत्रकारों से बात करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने पुष्टि की कि बातचीत के रास्ते खुले हैं। उन्होंने बताया कि सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर और ईरान के साथ कूटनीतिक बातचीत के कारण ही उन्होंने उस बड़े हमले को रोक दिया। इस हमले की योजना पहले से बनाई गई थी। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी संकेत दिया कि होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन को लेकर कोई समझौता हो सकता है। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि ईरान के परमाणु निरस्त्रीकरण को लेकर भी समझौता किया जाएगा। पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में कल शांति रैली के दौरान पुलिस थाने पर एक आत्मघाती हमले में 5 सुरक्षा कर्मियों सहित 14 लोग मारे गए। ये विस्फोट तब हुआ जब शांति रैली स्वात जिले के काबल कस्बे में पुलिस थाने के सामने से गुजर रही थी। फिलहाल किसी भी समूह या व्यक्ति ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। 9 लोग मौके पर ही मारे गए, जबकि 5 और लोगों की मौत की पुष्टि काबल अस्पताल में हुई। मध्य प्रदेश के उज्जैन में आज भगवान महाकालेश्वर की पहली श्रावण पाल की जुलूस निकाला जाएगा। ये जुलूस पवित्र सावन महीने के पहले सोमवार को निकाले जाने की परंपरा है। भगवान महाकाल को चंद्रमौलेश्वर रूप में पारंपरिक पाल की जुलूस में ले जाया जाएगा, जिससे भक्तों को दर्शन का अवसर मिलेगा।
3: मध्य प्रदेश के उज्जैन स्थित विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर से आज श्रावण मास की पहली सवारी निकलेगी। इस दौरान भगवान महाकाल चंद्रमौलेश्वर स्वरूप में पालकी में विराजमान होकर नगर भ्रमण करेंगे और श्रद्धालुओं को दर्शन देंगे। दोपहर 3:30 बजे सभा मंडप में पूजन होगा, जबकि शाम 4 बजे सवारी मंदिर से रवाना होगी। सवारी गुदरी चौराहा, बख्शी बाजार और कहारवाड़ी होते हुए रामघाट पहुंचेगी। यहां शिप्रा नदी के जल से भगवान महाकाल का अभिषेक और आरती की जाएगी। इसके बाद सवारी अलग अलग रास्तों से होते हुए शाम 7:00 बजे मंदिर लौटेगी। महाकाल मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्थाएं की हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: राष्ट्रमंडल खेल कल ग्लासगो में एक भव्य समारोह में संपन्न हो गए। समापन समारोह में वंदे मातरम के गान के साथ भारत की सांस्कृतिक विविधता और परंपरा का प्रदर्शन किया गया।
4: वंदे

0: समारोह में 100वें राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी के लिए भारत को ध्वज और कमान सौंपी गई। 2030 के राष्ट्रमंडल खेल अहमदाबाद में होंगे। भारत ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित 39 पदक जीते और पदक तालिका में चौथे स्थान पर रहा। खेल मंत्रालय के सचिव हरिरंजन ने कहा है कि देश के खिलाड़ियों ने अपेक्षा से बेहतर प्रदर्शन किया।
1: 2000

0: 26 के ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में कई खेलों की विधाओं में कटौती होने के बावजूद भी देश की टीम ने इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है कि पहले से और हमारी अपेक्षाओं से कई गुना ज्यादा। तो ये हम सबके लिए एक बहुत सुखद संकेत है कि शायद वो जो एक टर्निंग पॉइंट स्पोर्ट्स की दिशा में देश में आना चाहिए उसका समय आ गया है और 2030 में हम अगला कॉमनवेल्थ गेम्स भारत में अहमदाबाद शहर में आयोजित करने वाले हैं। ये भी हमारे लिए बहुत ही सुखद संयोग है और प्रतिष्ठा का विषय भी है।
1: ये समाचार हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
2: धन्यवाद मुनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों पर नशे के खिलाफ 100 सप्ताह के अभियान, राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन और मानसून से जुड़ी खबरें सबसे ऊपर छाई हुई हैं। हिंदुस्तान का पहला शीर्ष समाचार है, नशे के खिलाफ देश ने 100 सप्ताह की जंग छेड़ी। लोकसत्ता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कथन को सुर्खी बनाया है, ड्रग्स दुश्मन देशों की साजिश। नवभारत टाइम्स और दैनिक जागरण ने भी प्रधानमंत्री की कही इसी बात को शीर्ष समाचार बनाया है, जबकि जनसत्ता ने अमेरिका ईरान युद्ध के समाचार को सचित्र प्रकाशित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के वक्तव्य को अपना शीर्ष समाचार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान पर हमले रोकें बशर्ते शीघ्र हो करार। दैनिक भास्कर ने राष्ट्रमंडल खेलों में भारत की उपलब्धि के समाचार को शीर्षक दिया है, इस बार हमारे 54% गोल्ड बॉक्सिंग में आए, कुल मेडल में से 69% सिर्फ 3 खेलों में जीते। दैनिक ट्रिब्यून ने अपने संपादकीय लेख को शीर्षक दिया है, हादसों के हाईवे पत्र सड़क दुर्घटनाओं की गंभीरता को रेखांकित करते हुए सवाल करता है कि जब वैकल्पिक ईंधन और वाहनों की प्रदूषण जांच सरकार की प्राथमिकता है तो ऐसा ही अभियान सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए क्यों नहीं चलाया जाता। पत्र का कहना है कि बीते गुरुवार को लोकसभा में सड़क दुर्घटनाओं के जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए वो डराने वाले हैं। कश्मीर में हथियारों से लैस 2 आतंकवादियों की गिरफ्तारी के समाचार को दैनिक जागरण ने प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए इसे सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी बताया है। पुलवामा जिले में एक आतंकी से हैंड ग्रेनेड, राष्ट्र विरोधी पोस्टर और अन्य प्रतिबंधित सामग्री बरामद होने की खबर को पत्र ने बॉक्स में प्रकाशित किया है। जनसत्ता ने इसी खबर को शीर्षक दिया है, बारामूला में आतंकियों का मददगार गिरफ्तार।
1: आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में साइबर धोखाधड़ी और साइबर सुरक्षा, डिजिटल नागरिक की सुरक्षा विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प के लिए 100 सप्ताह का नशा मुक्त युवा अभियान आरंभ किया, कहा विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक। बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में विधानसभा की 3 सीटों पर उपचुनाव के लिए मतगणना जारी। ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों के प्रमुखों की बैठक आज लखनऊ में शुरू। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ नए दौर की वार्ता आज। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में शांति रैली के दौरान आत्मघाती हमले में 14 लोगों की मौत। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के समापन समारोह में अहमदाबाद को औपचारिक रूप से 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकार सौंपे गए। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आकाशवाणी सागर आपकी सेवा में है। 8:15 हुए हैं, समय लोक संगीत का है। आइए सुने सबसे पहले जयंत विश्वकर्मा को।

0: मुझे भी चाहिए कपड़ों में ऐसी सफेदी और चमक।
1: तो मिलेगी ना।
0: पर कैसे?
1: नए एडवांस फार्मूले और नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर, कपड़ों की चमक लौट आए, कपड़े खिल जाएं। आज ही लाइए असरदार नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर।
2: जीएसटी काउंसिल ने कमर्शियल बिजनेस में टैक्स को और भी सरल बना दिया है। बसों, ट्रकों और एम्बुलेंसों पर अब एक समान 18% टैक्स कर दिया गया है, जो पहले 28% था। एचएस कोड क्लासिफिकेशन की परवाह किए बिना ऑटो पार्ट्स पर अब एक ही 18% टैक्स कर दिया गया है। इस कदम से मैन्युफैक्चरर्स और पार्ट्स सप्लायर्स की उलझन कम होने तथा सप्लाई चेन आसान होने की संभावना है। दिलचस्प बात यह है कि इलेक्ट्रिक वाहनों के क्षेत्र में कोई बदलाव नहीं आया है। सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक टू व्हीलर और इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर 5% की रियायती जीएसटी दर का लाभ उठाते रहेंगे, जिससे वे सबसे कम टैक्स वाले व्हीकल ऑप्शन बने रहेंगे।
3: और आइए सुनते हैं अशोक चौरसिया से ये झूला गीत।

0: मुझे भी चाहिए कपड़ों में ऐसी सफेदी और चमक।
1: तो मिलेगी ना।
0: पर कैसे?
2: नए एडवांस फार्मूले और नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर, कपड़ों की चमक लौट आए, कपड़े खिल जाएं। आज ही लाइए असरदार नई खुशबू के साथ तनमन डिटर्जेंट पाउडर।
3: और आइए अब सुने उर्मिला पांडे को।

सखियों नमस्कार। आज कार्यक्रम की शुरुआत कुछ इस तरह की बातों से कर लेते हैं सखियों। जब बच्चा उदास होता है तो हंसा देती है माँ, नींद नहीं आती है तो सुला देती है माँ, नौनिहाल जब रोता है तो स्तनपान करा देती है माँ, आंखों में छुपी हर ख्वाहिश पहचान लेती है माँ, हर दर्द की दवा करती है माँ, खता सारी माफ करती है माँ। सच सखियों, माँ बनने का एहसास कितना सुखद और सुंदर होता है। अपने शिशु की एक किलकारी पर बलिहारी हो जाती है माँ। बिल्कुल सखियों, माँ और शिशु के बीच स्थापित ममतामयी स्नेह के तानों बानों से सजी बिंदिया कार्यक्रम की एक और खुशनुमा महफिल

आप सभी श्रोताओं सखियों सहेलियों का तहे दिल से स्वागत है। आज आप मुखातिब हैं रेडियो सखी रानी से, स्वीकार है हमारा स्नेहिल नमस्कार। कार्यक्रम की शुरुआत घर आंगन की बातों के साथ कर लेते हैं सखियों। सखियों, सावन भादों के आते ही त्योहारों की, पर्वों की मानो झड़ी सी लग गई है। शुरुआत कल अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस से हो चुकी है। खूब सखियां सहेलियों ने मिलकर इस मौसम के साथ साथ तीज त्योहार भी मना रहे हैं। भक्ति के साथ साथ दोस्ती और घर परिवार की जिम्मेदारियां भी बखूबी हमारी सखियां निभा रही हैं। और जब बात बच्चों की जाए सखियों, तो मन ममता से आह्लादित हो उठता है। तो ये कहना उचित ही होगा कि ये पर्व, ये त्योहार हमें आपस में प्रेम भाव से रहने के लिए प्रेरित करते हैं। और सखियों, ये बात तो हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि ये पर्व, ये त्योहार, ये उत्सव हमें आपस में प्रेम भाव से रहने के लिए तो प्रेरित करते ही हैं। लेकिन हमारे घर परिवार, समाज और देश में खुशियों की सौगात लेकर भी आते हैं ये उत्सव। सखियों, हमारी सारी खुशियों और आनंद, हम आनंदित हम तभी हो सकेंगे ना जब हम सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। और देखिए, हमारी खुशियों की शुरुआत हमारे अपने स्वस्थ बच्चों के साथ ही होती है। बिल्कुल सखियों, जब हम अपने बच्चों की देखभाल शिशु अवस्था में ही अच्छे से करते हैं, उनके खान पान का अच्छे से ध्यान रखते हैं, तभी नन्हा शिशु एक स्वस्थ बालक या बालिका के रूप में बड़ा होता है। तो इस तरह सखियों, हमारे नवजात शिशु स्वस्थ रहें, इसके लिए सबसे जरूरी होता है नवजात बच्चों के लिए माँ का दूध यानी कि स्तनपान जरूर कराया जाए। इसी बात की जानकारी के लिए ही 1 अगस्त से 8 अगस्त तक एक सप्ताह तक विश्व स्तनपान सप्ताह मनाते हैं, ताकि इसके द्वारा हम बहनों में स्तनपान के प्रति जागरूकता ला सकें। सखियों, विश्व स्तनपान सप्ताह विश्व भर के शिशुओं की सेहत में सुधार और स्तनपान कराने को प्रोत्साहित करने के लिए लगभग 170 देशों से अधिक देशों में हर वर्ष अगस्त माह के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। माँ का दूध बच्चों के लिए अनमोल उपहार होता है सखियों। नवजात शिशु और बच्चे को पूरी सुरक्षा, प्यार तथा पोषण की जरूरत होती है और स्तनपान उन सभी जरूरतों को पूरा करता है। तो सखियों, ये बात तो आप जानती ही होंगी कि माँ का दूध बच्चे के संपूर्ण विकास के लिए पोषण का सबसे अच्छा स्रोत होता है। अब ये प्रश्न आता है कि आखिर माँ के दूध में ऐसा क्या होता है जो बच्चे के लिए जरूरी होता है, क्या लाभ होते हैं स्तनपान से? तो डॉक्टर के अनुसार शिशु के जन्म के 1 घंटे के भीतर स्तनपान कराना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि शुरुआती दिनों का माँ का पीला गाढ़ा दूध, जिसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, वो नवजात शिशु के लिए पोषण के लिए बिल्कुल सही आहार होता है। माँ के दूध में बच्चे के लिए आवश्यक प्रोटीन, वसा, कैलोरी, लैक्टोज, विटामिन्स, लोह तत्व, खनिज, पानी और एंजाइम्स पर्याप्त मात्रा में होते हैं सखियों। शिशु माँ के दूध को आसानी से पचा भी लेता है और माँ का दूध बच्चे की प्रतिरोधक क्षमता यानी कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता को भी बढ़ाता है। तो इस तरह माँ का दूध बच्चे के लिए सर्वोत्तम संपूर्ण पोषण आहार होता है, जो कि भविष्य में उसे कई तरह के संक्रमणों से सुरक्षित रखता है। आगे बात करें सखियों, तो माँ का दूध बच्चे के मस्तिष्क के विकास में भी सहायक होता है। यह संक्रमण रहित होता है। साथ ही विशेषज्ञों ने ये सिद्ध कर दिया है कि स्तनपान से माँ के शरीर में प्रोलैक्टिन नामक हार्मोन पर्याप्त मात्रा में बनता है, जिसके कारण माँ तनाव मुक्त रहती है, साथ ही स्वस्थ और अच्छा महसूस करती हैं। और दूसरा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण माँ और बच्चे में भावनात्मक संबंध बढ़ते हैं।

स्तनपान से हमारे शिशु तो स्वस्थ रहते ही हैं, साथ ही हम बहनों के लिए भी इससे कई लाभ होते हैं। विशेषज्ञों ने बताया है कि स्तनपान से स्तन कैंसर

सा सोच लें कि स्तनपान से बच्चा ठीक हो जाता है। यदि स्थितियां ज्यादा बिगड़ती हैं तो डॉक्टर के पास समय रहते आप जरूर जाएं, उनसे संपर्क करें। इस समय कोई कोताही ना बरतें और दूध पिलाने के पहले और बाद में स्वच्छता का ध्यान रखना जरूरी है और दूध भी बच्चे की आवश्यकता अनुसार पिलाते रहना चाहिए। तो सखियों, विश्व स्तनपान सप्ताह पर हमने स्तनपान से संबंधित बहुत ही अच्छी जानकारियां आपके साथ साझा की है। तो शिशु और आप तनाव मुक्त रहें सखियों, इसके लिए स्तनपान तो कराना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन कहते हैं कि संगीत से बढ़कर कोई दवा नहीं होती है। तो चलिए, अब कार्यक्रम में शामिल हो रहा है बहुत ही प्यारा सा गीत, आइए सुनते हैं ये गीत।

चलिए सखियो, इस बहुत ही पवित्र और मधुर से गीत के साथ ही हम अपने बातों के कारवां को एक कदम आगे बढ़ा लेते हैं। सखियों, आपकी हमारी बातों के तहत आज बात अगस्त माह की। जी हाँ सखियों, बचपन से ही हमारे मन में अगस्त माह की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वैसे तो कहते हैं सखियों कि जीवन का हर लम्हा हमारे लिए खास होता है, लेकिन हम जब छोटे होते हैं ना, तब इतनी समझ तो होती नहीं। बाल मन जो देखता है, सुनता है, उसकी छवि, उसकी यादें, उस समय की बातों की गहरी छाप हमारे मन पर होती है। ऐसे ही अगस्त माह आते आते आज भी कई त्योहारों की शुरुआत हो जाती है, जैसे मित्रता दिवस है, नागपंचमी है, रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, गणेश और पर्युषण पर्व है। लेकिन सखियों, सबसे खास दिवस 15 अगस्त का होता है। बिल्कुल सखियों, अगस्त माह तो मनो खुशियों की सौगात लेके आता है। जगह जगह घरों में झूले डले होते हैं, मेलों का आयोजन होता है, देशभक्ति और आध्यात्मिकता की भावना चहुं ओर फैली नजर आती है इन दिनों में। तो अब हमारी आपकी बात में आज क्या खास है, ये तो जान लेते हैं सखियों। हमारे देश भारत वर्ष को 15 अगस्त सन 1947 को आजादी मिली थी, लेकिन सखियों आजादी की राह इतनी आसान कहां थी। कितने कितने बलिदानों और आंदोलनों के बाद हमें ये कीमती आजादी मिली थी। इन्हीं आंदोलनों में से एक सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन था भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, और जिसकी शुरुआत सन 1942 को 8 अगस्त को द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुई थी, जिसका लक्ष्य भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को समाप्त करना था। 9 अगस्त को सखियों सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया। ये आंदोलन एक जन आंदोलन था जिसमें लाखों युवाओं, कृषकों, महिलाओं, मजदूर वर्ग को इस आंदोलन ने अपनी ओर आकर्षित किया, जिसकी वजह से 9 अगस्त को कई गिरफ्तारियां भी हुई थी। इसमें अंग्रेजों को भारत छोड़ो और भारतीयों को करो या मरो का नारा दिया गया, और इस आंदोलन में महत्वपूर्ण था पूर्ण स्वराज की मांग प्रबलता से रखी गई थी। सखियों, इस आंदोलन की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि इसके तहत सभी नेताओं को तो गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन इसकी बागडोर आम जनता के हाथों में आ गई और उन्होंने अपने अपने ढंग से इसकी विवेचना की। हालांकि आंदोलन को जल्दी सफलता तो नहीं मिली सखियों, लेकिन अंग्रेजी हुकूमत को इस बात का एहसास हो गया था कि अब भारत पर शासन करना उनके लिए अत्यंत दुष्कर हो गया है। ये आंदोलन ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बहुत प्रभावशाली साबित हुआ और इससे शासन की नींद उड़ गई थी। वैसे तो आजादी की लड़ाई कई वर्षों पहले से जारी थी सखियों, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन की जरूरत इसलिए पड़ी थी क्योंकि बिना मर्जी के भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में धकेल दिया गया था, जिसमें भारत के हजारों सैनिक शहीद हो गए थे, और यही भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का कारण बना। तो सखियों, हम अपने देश पर जान न्यौछावर करने वालों को बारंबार नमन करें तो भी कम है। सच्ची श्रद्धांजलि तो तब है जब हम उन्हें मन से याद करके जो स्वतंत्रता, फ्रीडम या आजादी हमें मिली है, उसका सम्मान करें और अपने नैतिक मूल्यों के साथ निरंतर विकास करते रहें। चलिए, हमारी और आपकी बात यहीं तक, और कार्यक्रम में वक्त है एक और गीत सुनने का।

आगे बढ़ते हैं ज्योति पुंज के साथ। सखियों, भारत के स्वाधीनता संग्राम की ग्रैंड ओल्ड लेडी और भारत छोड़ो आंदोलन के समय मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराने वाली अरुणा आसफ अली की आज हम बात करने जा रहे हैं ज्योति पुंज में। आपका जन्म 16 जुलाई सन 1909 को तत्कालीन ब्रिटिश पंजाब के अधीन कालका के एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा लाहौर और नैनीताल में हुई थी। स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद अरुणा आसफ अली गोखले मेमोरियल स्कूल कलकत्ता में शिक्षक के तौर पर कार्य करने लगी। आसफ अली से विवाह करने के पश्चात सक्रिय तौर पर स्वाधीनता संग्राम से आप जुड़ गईं। नमक सत्याग्रह के दौरान सार्वजनिक सभाओं में भाग लेने के कारण आपको गिरफ्तार कर लिया गया। सन 1932 में तिहाड़ जेल में बंदी होने के कारण उन्होंने राजनीतिक कैदियों के साथ बुरा बर्ताव करने के विरोध में भूख हड़ताल की। उनके प्रयासों द्वारा कैदियों की दशा में सुधार तो हुआ, लेकिन अरुणा को अंबाला की जेल में एकांत कारावास की सजा दे दी गई। बहुत तरह के राजनीतिक उतार चढ़ाव के बाद सन 1953 में उनके पति आसफ अली का निधन हो गया, जिसमें अरुणा मानसिक और भावनात्मक रूप से बहुत कमजोर हो गई थी। सन 1958 में अरुणा आसफ अली दिल्ली की पहली मेयर बनी। सन 1975 में आपको शांति और सौहार्द के क्षेत्र में लेनिन पुरस्कार और सन 1991 में अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान के जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार से नवाजा गया। सन 1992 में उन्हें पद्म विभूषण और सन 1997 में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और सखियों, 29 जुलाई सन 1996 को आपको वीर गति प्राप्त हुई। 1998 में उनकी याद में एक डाक टिकट भी जारी किया गया। तो सखियों, ऐसे महान व्यक्तित्व की धनी अरुणा आसिफ अली को हम बारंबार नमन करते हैं और ऐसी स्वतंत्रता सेनानी को हम अपनी श्रद्धा के पुष्प अर्पित करते हैं और संकल्प लेते हैं कि हम भी समाज के हित में, देश के हित में, साथ ही साथ अपने परिवार के हित में जो भी नेक कार्य होते हैं उनको करते चलें। देश इस वीरांगना को उनके दिए अभूतपूर्व योगदान के लिए हमेशा याद करता रहेगा। आज ज्योतिपुंज सखियों बस यहीं तक। अगले सप्ताह एक और व्यक्तित्व से आपको रूबरू कराएंगे। और अब शामिल हो रहा है एक और गीत कार्यक्रम बिंदिया में।

बिल्कुल सखियों, सावन का त्यौहार चल रहा है और मौसम भी बहुत अच्छा मनभावन बना हुआ है, तो आप सभी बहुत आनंद से रहें, उत्साह से रहें, खुशियों से सारे पर्व त्यौहार मनाते रहें और अपने बच्चों का भरपूर ध्यान रखें, साथ ही साथ अपना खुद का भी भरपूर ध्यान रखें, पौष्टिक आहार करते रहें। और इन्हीं आशाओं इन्हीं दुआओं के साथ के हमारे श्रोताओं के जीवन में आने वाला हर लम्हा खुशियों भरा हो, शांतिमय हो, दीजिए अनुमति रानी को। कार्यक्रम बिंदिया से नमस्कार।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम बिंदिया एफएम बैंड पर। हम आकाशवाणी सागर से बोल रहे हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे विविध भारती राष्ट्रीय सेवा के कार्यक्रम। अनुप्रसारण हमारे मुंबई केंद्र से होगा। आइए इंतजार करें कुछ पल।

गोलमाल थ्री से ये गीत अभी आप सुन रहे थे शान अनुष्का मनचंदा की आवाजों में, कुमार ने इसे लिखा, प्रीतम का संगीत। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम चित्रलोक।

जिंदगी ना मिलेगी दोबारा इस फिल्म से गीत अभी आप सुन रहे थे फरहान अख्तर, अभय देओल, ऋतिक रोशन और साथियों की आवाजों में शंकर एहसान लॉय का संगीत था। वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का।

0: आँखें ऊपर वाले की नियामत हैं, जिनके जरिए हम इस दुनिया को देखते हैं।
1: जीवन से भरी तेरी आँखें।
0: आँखों से जुड़ी बीमारियों को लेकर हमारी चिंता बड़ी गहरी होती है, इसीलिए विविध भारती के स्टूडियो में आ रहे हैं जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अनूप राजाध्यक्ष।
2: देखिए, जब अब बच्चा आता है हमारे पास 7-8 साल का है और हमने उसको सपोज -3 दे दिया, देख के ऐसे हड़बड़ा जाते हैं जैसे कि हमने कहा है बच्चे को कोई बड़ी बीमारी होगी। कैसे कह सकते इसको नंबर है, हम दोनों को नहीं।
0: सेहतनामा 3 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: दलेर मेहंदी चित्रा और साथियों की आवाजों में गीत अभी आप सुन रहे थे रंग दे बसंती फिल्म से। प्रसून जोशी ने इसे लिखा, एआर रहमान का संगीत। इसके साथ ही आज का ये प्रोग्राम चित्रलोक यहीं समाप्त होता है।
1: वो कॉमिक क्रिएटर है,
2: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है,
1: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
2: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया, तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
1: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
2: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती थी।
1: 5 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: म्यूजिक थेरेपी कि संगीत से बीमारों का इलाज भी होता था।
0: संगीतकार नौशाद।
1: अब उस्तादों ने कहा है, पंडितों ने लिखा है कि जितने शार्प नोट हैं वो इंसान में चुस्ती पैदा करते हैं। तो जैसे देखे सूरज की पहली किरण फूटती, राग में एक शार्प नोट शुरू होता है, ललित का मध्यम शार्प लगती है कि अब इंसान को उठना है, मुँह हाथ धोना है, काम काज पर। जैसे जैसे सूरज चढ़ता जाएगा एक एक शार्प नोट, जैसे सूर्य अस्त होने लगता है एक एक कोमल सुर शामिल होना शुरू होता है। तो ये देखिए बड़ी भारी साइंस है। अगर कोई फिल्म में गाना वाना बना लिया, लोगों को पसंद आ गया तो कोई कमाल नहीं हुआ। ये तो इतना बड़ा साइंस है कि सोचो तो ये लगता है कि अरे हमको तो एक जर्रा भी हमारे पास नहीं है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

0: किताब हो।
1: किसी ने क्या खूब कहा है कि शायर की दास्तान उसकी पैदाइश से शुरू तो जरूर होती है पर उसकी मौत पर खत्म नहीं होती। उसके अशार वक्त और जमाने की हदों के पार जाकर उसकी याद को जिंदा रखते हैं। शायर पैदा तो होते हैं लेकिन कभी मरते नहीं हैं। और ऐसे ही अमर शायर और गीतकार हैं शकील।

0: जिसने किया है।
1: शकील शायरी की दुनिया से फिल्मों में आए थे, यानी फिल्मों में आने से पहले वो शायरी के आसमान का एक चमकता हुआ सितारा बन चुके थे। वो मुशायरों की जान हुआ

करते थे। उस दौर में तरक्की पसंद शायरी पूरे उफान पर थी, जुल्मों के खिलाफ आवाज बुलंद की जा रही थी, गरीबों और लाचारों को जगाने के लिए शायरी की जा रही थी। ऐसे तूफानी दौर में भी

टायरे सुनने के लिए जाते थे। नामचीन निर्माता निर्देशक ए.आर. कारदार ने जब शकील बदायूनी को मुशायरे में सुना तो उस वक्त बन रही अपनी फिल्म दर्द के गाने लिखने का मौका दिया। बस फिर क्या था, मुनव्वर सुल्ताना, श्याम और सुरैया की अदायगी से सजी इस फिल्म के जरिए शुरू हुआ एक सुरीला अफसाना। जी हाँ, उमा देवी ने गाया, शकील बदायूनी का लिखा ये।

जी, शकील बदायूनी के शुरुआती हिट गानों में से एक है। दिलचस्प बात यह है कि शायरी की दुनिया से आने के बावजूद शकील ने फिल्मी गीतों के व्याकरण को अच्छी तरह से समझ लिया था। उनकी पहली फिल्म के गाने एक तरफ तो सरल और सीधे सादे हैं, तो दूसरी तरफ उनमें शायरी की ऊंचाई भी है। 1946 से सीधे छलांग लगाते हैं और आ पहुंचते हैं सन 1949 में। एक बार फिर A.R. कारदार की फिल्म जिसका नाम दुलारी, नौशाद की धुन और एक बार फिर शकील का इंतजार की कशिश से लबरेज नगमा। इस गाने को नौशाद ने राग पहाड़ी में क्या खूब बनाया है। इस गाने में नौशाद ने वाद्य यंत्रों के मामले में बड़ी कंजूसी दिखाई है और इस कंजूसी ने बनाया आला दर्जे का ये गाना सुहानी रात।

यूं तो मजरू और साहिर जैसे गीतकारों ने कमाल के भजन दिए हैं, इसी तरह शकील बदायूनी भजनों के मामले में एकदम अलग नजर आते हैं। भक्ति की पावन ऊंचाई पर पहुंचकर शकील ने जो कुछ लिखा उसे दुनिया आज तक गुनगुना रही है। बैजू बावरा फिल्म का वो ऐतिहासिक गीत जो शकील, नौशाद और मोहम्मद रफी का संगम है, लोग कहते हैं कि ये सांप्रदायिक सद्भाव की एक अनूठी मिसाल है। इस गाने के बोल हैं मन तरपत हरि दर्शन को आज।

दिलचस्प बात यह है कि शकील के रचना संसार में कुछ ठेठ शास्त्रीय संगीत पर आधारित रचनाएं भी हैं, जैसे मुगल-ए-आजम फिल्म का ये गीत जिसे गाया उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब ने।

आपको ये जानकर हैरत होगी कि शकील बदायूनी ऐसे एकमात्र गीतकार हैं जिन्होंने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन सुपर हिट होली गीत दिए हैं और तीनों की लोकप्रियता कमाल की। सन 1952,

0: फिल्म कोहिनूर।
1: तन रंग लो जी आज मन रंग लो, तन रंग लो खेलो खेलो उमंग भर रंग प्यार के ले लो
2: रंग लो
0: और फिर फिल्म मदर इंडिया।

इन तीनों गानों को सुने तो जिस दिन सुने उस दिन मन की होली मन जाती है। आपको याद होगा साहिर लुधियानवी ने ताजमहल के बारे में लिखा था, एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक, मेरे महबूब कहीं और मिलाकर मुझसे। दरअसल ये शकील बदायूनी के एक नायाब नगमे का बेमिसाल जवाब है। फिल्म लीडर के लिए शकील ने ताजमहल पर आधारित ये रचना लिखी थी।

शकील बदायूनी की अनगिनत गजलें हैं जिन्हें कई नामचीन कलाकारों ने गाया है। बेगम अख्तर की गजलों की दुनिया में शकील बदायूनी की शायरी चमकती हुई नजर आती है, जैसे

0: श्रोताओं, बहुत बहुत अभिनंदन है आप सभी का मनोपचार सुखी संसार कार्यक्रम में। मैं हूं मनोज सक्सेना और मुझसे हमेशा की तरह बातचीत करने के लिए आज मेरे साथ हैं भोपाल के जाने माने न्यूरो मनोरोग नशा मुक्ति एवं सेक्स संबंधी रोग विशेषज्ञ और काउंसलर डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजपूत जी। सर नमस्कार।
1: नमस्कार श्रोताओं।
0: सर, आज जिस मुद्दे पर हम चर्चा करना चाहते हैं, अमूमन उस पर लोग खुलकर बात करना पसंद नहीं करते
1: जी,
0: पर आपका इतना लंबा अनुभव है और आप देखा जाए तो एक मनोरोग के ऐसे डॉक्टर हैं जो बहुत खुल के बात करते हैं, इसलिए मैं हिम्मत कर रहा हूं आपसे बात करने की। मैं जानना चाहता हूं, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भी ये सवाल पूछे हैं कि भारत में सेक्स एजुकेशन क्यों जरूरी है।
1: बहुत ही अच्छा सवाल है और दूसरी बात है कि इस पे बात होना जरूरी है
0: जी,
1: क्योंकि बात नहीं होती। और आपको जान के अचंभा होगा कि हमारे यहाँ क्या है कि बहुत सारे जो क्राइम हो रहे हैं अगेंस्ट वुमेन, चिल्ड्रन या मैन जो भी हैं, तो वो ये जो जिज्ञासा रहती है अर्ली एज में, है ना, टीनेजर्स में जब वो सेक्सुअल लाइफ शुरू होती है, उनमें प्यूबर्टी आती है, सेक्सुअल चेंजेस आते हैं, तो उसके बारे में हम ज्ञान नहीं दे रहे हैं। तो यदि उस जिज्ञासा को सही तरीके से एक सिस्टम के तहत, हम एजुकेशनल सिस्टम के तहत या फैमिली में एक सिस्टम के तहत उसको खत्म नहीं करेंगे सही ढंग से, तो वो उसको खत्म करने के लिए कहीं दूसरे सोर्स पे जाएंगे, गलत लोगों से पूछेंगे या गलत लिटरेचर पढ़ेंगे या फिर गलत वीडियो टीवी सोर्स इनका या यूट्यूब पे, तो उससे क्या है, और उनकी उतनी दिमाग में उतनी क्षमता नहीं है कि उसे समझ सके उसमें सही क्या है गलत क्या है। तो ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि हमें बच्चे की जो गीली मिट्टी है उसको सही संस्कार इसमें भी देना है ना। तो जब तक बात नहीं करेंगे, उन्हें समझाएंगे नहीं, उनको धीरे धीरे एज के हिसाब से यदि हम उसके बारे में सेंसिटाइज नहीं करेंगे, तो वो उनकी जिज्ञासा शांत नहीं होगी। शांत नहीं होगी तो वो गलत रास्ते पे जाके गलत चीजों से सीख के हाई रिस्क बिहेवियर कर सकते हैं, तो उनमें गलत सेक्सुअल प्रैक्टिस भी शुरू कर सकते हैं। तो यदि हमारे एजुकेशन सिस्टम में, हमारे समाज में इसको हम सिखाएं, तो बच्चा समझेगा और गलत हरकतों से बचा रहे।
0: बिल्कुल सही बात है सर, क्योंकि बच्चे के मन में जब जिज्ञासाएं आती हैं तो वह अपने हम उम्र लोगों से बात करता है
1: जी,
0: वह भी उतने ही कच्चे हैं
1: जी,
0: वह भी उतने ही अनजान हैं
1: जी।
0: तो कहते हैं ना कि नीम हकीम खतराए जान
1: जी,
0: वो स्थिति वहां निर्मित हो जाती है कि आप अनभिज्ञ लोगों से या अनजान व्यक्ति से, अधूरे ज्ञान वाले व्यक्ति से आप ज्ञान ले रहे हैं
1: जी,
0: तो आपको कहीं ना कहीं और दिक्कत आएगी
1: जी।
0: अभिभावक बहुत परेशान है इस बात को लेकर
1: जी
0: कि बच्चे कहीं बिगड़ ना जाए। आजकल मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से, सोशल मीडिया से इतना सारा जो है वो परोसा जा रहा है जो कि समाज को बहुत ज़्यादा गर्त में ले जा रहा है, विशेष तौर पे देखा जाए तो युवा पीढ़ी को बहुत ज़्यादा परेशानी पैदा कर रहा है। इस पूरी परिस्थिति में अगर कोई बच्चा आ चुका है तो एक सवाल तो ये है कि उसे कैसे हम जाने कि उस परिस्थिति में है, उसे कैसे बाहर निकालें। दूसरा, ऐसी परिस्थिति में बच्चा जाए ना
1: जी,
0: वो अपना ध्यान भटकाए ना और अपने जो टारगेट्स उसने जीवन के तय किए हैं उस पर निरंतर चल जाए
1: जी,
0: उसके लिए क्या करें।
1: देखिए, एक बाई चांस बच्चा चला गया है ठीक है, और आपको पता चल गया है कि इसमें गलत आते हैं कि ये
0: बिल्कुल
1: वीडियो, गलत वीडियो देख रहा है या रात भर इंटरनेट पे लगा रहता है या फिर कुछ गलत हरकतें कर रहा है ठीक है, तो उसमें सबसे पहले तो नाराज नहीं होना है क्योंकि हमारी निगरानी कम हुई, हमने जानकारी नहीं दी इसलिए बच्चा गया। उसमें बच्चे की गलती आधी है तो आधी अपनी
0: है,
1: तो वो स्वीकारना जरूरी है। और बच्चा हमारा है, उसे सही रास्ते पे, तो उससे फिर भी उसमें ये नहीं कि उसको मार कूट रहे हैं या फिर उसको

0: बहुत ज्यादा ही चिल्ला रहे हैं, प्रताड़ित कर, नहीं तो उसमें और ज्यादा वो फ्रस्ट्रेशन में जाएगा, वो विद्रोही हो जाएगा। तो आप उससे बात करें और सही गलत समझाएं, है ना, क्यों बच्चा अपना है तो उसको हम खुद ही समझाएंगे तो वो ज्यादा समझेंगे क्योंकि आपसे बॉन्डिंग है। और दूसरा सवाल था कि जाए ही ना, तो इसमें यह है कि आप डेली बेसिस पे, मैं बोलता हूँ हमेशा कि एक मील पूरा परिवार एक साथ ले, उस पे सबकी सुनी जाए कि दिन भर उनने क्या किया, बच्चे ने स्कूल में क्या किया, कोचिंग में क्या किया,
1: बच्चों को समय देना,
0: एक जो क्वालिटी टाइम होती ना उस समय टीवी मोबाइल सब बंद होनी चाहिए, चर्चाएं नहीं, सबको बोलने, बच्चे को भी बड़े को भी, सब एक दूसरे का दिन भर का हालचाल और क्या चल रहा है, क्या जिज्ञासा है बच्चे की, ठीक है, तो आप समझ जाएंगे कि ये बच्चे को जिज्ञासा वैसी हो रही, तो आप उसको फिर आप अपने हिसाब से उसको समझा सकते हैं, उसको गाइड कर सकते हैं। और टीनेजर्स जो हैं, वयस्क जो बच्चे हैं, एडोलसेंट वाले बच्चे हैं, उन सबसे दोस्ताना माहौल में बात करना इसलिए जरूरी है कि भाई वो आपकी सलाह पे ज्यादा ट्रस्ट कर सकता है, बाहर तो वो मजबूरी में जा रहा है सलाह लेने के लिए, सीखने के लिए, तो उसे आप पे ज्यादा भरोसा है तो आपकी बात पहले सुनेगा वो, तो हम पहला अपना मौका क्यों गंवाएं,
1: सही बात,
0: ताकि बच्चा गलत, वो गलत चला भी गया है तो ऐसा कोई क्राइम नहीं कर दिया, ठीक है, आप पता करिए, आदतों को वापस रिवर्स किया जा सकता है, गलत आदत ही तो हुई है, कोई बीमारी थोड़ी हो गई है ना, तो आप उसको सपोर्टिव रहते हुए समझा बुझा के आप सही रास्ते पे अच्छे नियम कायदे से रहें, और जैसे अपन भोजन में संयम सिखाते हैं वैसे इन चीजों में भी सिखा सकते हैं।
2: डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजपूत, न्यूरो मनोचिकित्सा क्लिनिक भोपाल, मनोरोग नशा मुक्ति एवं सेक्स संबंधी रोग विशेषज्ञ एवं काउंसलर, मिर्गी, सिर दर्द, नसों के दर्द, सभी तरह की मानसिक एवं व्यावहारिक समस्याओं, बुजुर्गों, बच्चों, महिलाओं की विभिन्न व्यावहारिक समस्याओं के निदान हेतु संपर्क करें, मोबाइल नंबर 9406925768, हमीदिया हॉस्पिटल के सामने 27 न्यू ताज मार्केट एवं 11 ऋषि कॉम्प्लेक्स DIG बंगला चौराहा भोपाल।
3: डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजपूत अब आपके आसपास के क्षेत्र बाड़ी बरेली, उदयपुरा और बीना में भी उपलब्ध है।
1: सर, कोई व्यक्ति इन सारी आदतों का एडिक्ट हो चुका है
0: जी,
1: माता पिता बहुत परेशान है
0: जी,
1: इस चीज से वो बाज नहीं आ रहा है
0: जी,
1: तो क्या फिर इसको इलाज की तरफ ले जा सकते हैं
0: जी? बिल्कुल, देखिए जैसे इंटरनेट एडिक्शन है, अब इंटरनेट पे क्या कंटेंट देख रहे हैं,
1: हाँ
0: वो कंटेंट कुछ भी हो सकता है, गेम्स हो सकते हैं, सेक्सुअल कंटेंट हो सकता है, या कोई भी फालतू चीज हो सकती है, तो वो जो एडिक्शन जो है इंटरनेट एडिक्शन है ना, तो उसका इलाज है, उसी से ये भी ठीक हो जाता है ना,
1: ओके ओके,
0: हाँ तो उसका भाई उसकी वजह से जो जो दिक्कतें हो रही, कितना समय नष्ट हो रहा है, बच्चा सो नहीं पा रहा है या अपना काम पे ध्यान नहीं दे पा रहा है, उसकी ग्रोथ रुक गई है ना, उसकी पढ़ाई लिखाई खराब हो रही है, तो फिर उसको लाके काउंसलिंग और कुछ दवाएं जो इसकी इम्पल्स जो आती है, जो एडिक्शन की इम्पल्स आती है, उसको कम करने के लिए दवाइयां होती हैं, तो वो ठीक हो जाता है कुछ महीनों में ही, बहुत अच्छा हो जाता है। और मैंने जैसा बताया कि यदि एडिक्शन कोई भी हो, 3 से 6 महीने में इलाज भी बंद हो सकता है, कोई बड़ा भारी लंबा इलाज नहीं चलता है।
1: सर, बात हम जैसे शुरुआत की थी सेक्स एजुकेशन की, ये जो एजुकेशन शब्द जब लोग सुनते हैं तो कहते हैं अब ये पढ़ाएंगे क्या, ये हमारे यहाँ की भारत में कहीं ना कहीं हम भी उस लेवल तक सोच नहीं पा रहे हैं
0: जी,
1: और ऐसी स्थिति में शिक्षा तो जो भी है बच्चों को महंगी से महंगी दी जाती है, पर यह एक नैतिक शिक्षा में आनी चाहिए, और इसकी नैतिक शिक्षा घर से कब शुरू की जाए?
0: देखिए, मैंने जैसे शुरू से बता रहा हूँ कि हर एज में अलग चेंजेस आते हैं, 5 साल 10 साल में अलग है, 15 साल में अलग है, 20 में अलग है, तो बच्चे की एज के हिसाब से
1: ओके
0: उसको कि बताना है कि ये फिजियोलॉजिकल है, नॉर्मल चेंजेस हैं, ये होना नॉर्मल है, तो उसको ज्ञान देना जरूरी है, ये नहीं है कि अलग से उसका सिलेबस बना है, ठीक है, ये पेरेंट्स हैं, काउंसलर्स हैं, हर स्कूल में आजकल काउंसलर भी हैं, और कुछ लिटरेचर भी है जो सही ज्ञान देता है, तो प्रयास की बात है कि उसको गाने से अच्छा है कि आप छोटे छोटे स्टेप्स रखें, तो बच्चे को समझ भी आ जाती है और आपसे खुल भी जाता है बच्चा।
1: बिल्कुल वैसे ही मैं समझता हूँ कि जब किसी बच्ची को पहली बार मासिक धर्म आता है तो माँ उसे पूरी तरह से टीच कर समझाती है कि कैसे आपको मैनेज करना है, कैसे आपको रहना है, कैसे आपको क्या करना है, वही कुछ इस तरह की व्यवस्था हमारे समाज में होनी चाहिए, परिवार में होनी चाहिए, कि बच्चों को उनकी उम्र के हिसाब से उन्हें उस चीज की नॉलेज दी जाए और अच्छे बुरे के बारे में उनको बताया जाए
0: जी।
1: मित्रों, वाकई ये ऐसा विषय है जिस पर लोग

0: खुलकर बात नहीं करते हैं, पर सर का अपना इतना लंबा चौड़ा अनुभव है और वह एक मनोविज्ञान से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। उन्होंने बहुत साफ गोई से इन सवालों का जवाब दिया है। आपके मन में भी कोई और विषय है जो मनोरोग से जुड़ा हुआ है तो आप हमें व्हाट्सएप कर दीजिए, हम सर से जरूर बात करेंगे। हमारा नंबर है 9406925768। नंबर फिर सुन लें, 9406925768। अब मिलेंगे हम अगले सोमवार। अभी हम बात कर रहे थे भोपाल के जाने माने न्यूरो मनोरोग नशा मुक्ति एवं सेक्स संबंधी रोग विशेषज्ञ और काउंसलर डॉक्टर नरेंद्र सिंह राजपूत जी से। स्वीकार कीजिए मनो सक्सेना का नमस्कार।
1: मनोपचार सुखी संसार। अभी श्रोता ये प्रायोजित कार्यक्रम सुन रहे थे।

जी आकाशवाणी सागर है। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे जिले की चिट्ठी हमारे भोपाल केंद्र से, आइए प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी भोपाल है। कृपया अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है जिले की चिट्ठी।
1: आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है सतना जिले की चिट्ठी। आलेख लाल बहादुर तिवारी, वाचन स्वर दीपा सिंह। सतना जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात मौसम की। जिले में लगातार हो रही बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। खेतों में किसान धान की रोपाई में जुटे हैं। वर्षा होने से भूजल स्तर में भी सुधार हुआ है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। हालांकि पिछले साल की तुलना में इस बार कम बारिश हुई है। सावन माह शुरू होते ही जिले के सभी शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। ऐतिहासिक जगतदेव तालाब मंदिर और बिरसिंहपुर के बाबा गैवीनाथ धाम में सुबह से ही भक्त पूजा अर्चना के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्थाओं के विशेष इंतजाम किए हैं। नगर परिषद कोठी में नगरीय विकास और आवास राज्य मंत्री प्रतिमा बागरी ने 2 करोड़ रुपए की लागत से बने आधुनिक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया। इसके साथ ही 2,54,00,000 रुपए की लागत से बनने वाले विश्राम गृह यानी मंगल भवन का भूमि पूजन भी किया गया। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सतना और मैहर जिले में कई सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। शासकीय संदीपनी विद्यालय मैहर में विद्यार्थियों ने गुरु वंदना और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से गुरु शिष्य परम्परा को जीवंत किया। सतना और मैहर जिले की दिशा समिति की संयुक्त बैठक सांसद गणेश सिंह की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में बाणसागर ग्रामीण जल प्रदाय योजना, सिंचाई परियोजनाओं और पेयजल योजनाओं की समीक्षा की गई। जिले में सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के पालन को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। कलेक्ट्रेट परिसर में बिना हेलमेट पहुंचने वाले दोपहिया वाहन चालकों पर चालानी कार्रवाई की गई। वहीं हेलमेट पहनकर आने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। लोगों को सड़क सुरक्षा का संदेश देने के लिए निशुल्क हेलमेट भी वितरित किए गए। कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस की अध्यक्षता में जिला शहरी विकास अभिकरण की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में नगरीय क्षेत्रों की पेयजल व्यवस्था, स्वच्छता और विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। सुप्रीम कोर्ट की रोड सेफ्टी कमेटी के अध्यक्ष और पूर्व न्यायाधीश अभय मनोहर सप्रे की अध्यक्षता में जिला रोड सेफ्टी कमेटी की बैठक हुई। बैठक में जिले के ब्लैक स्पॉट्स की समीक्षा की गई और सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उपायों पर विस्तार से चर्चा हुई। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस प्रशासन लगातार सक्रिय है। पुलिस अधीक्षक

निर्देश पर रात्रि गश्त बढ़ाई गई है और असामाजिक तत्वों पर लगातार नजर रखी जा रही है। मौसमी बीमारियों को देखते हुए जिले के अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में मरीजों को निःशुल्क उपचार की सुविधा दी जा रही है। नियमित टीकाकरण अभियान चलाए जा रहे हैं और स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से लोगों को बीमारियों से बचाव के लिए जागरूक किया जा रहा है। खरीफ सीजन को देखते हुए सतना और मैहर जिले में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध कराया गया है। कृषि विभाग के अनुसार यूरिया, डीएपी, एनपीके और एसएसपी सहित सभी प्रमुख खाद पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। अधिकारियों ने किसानों से अधिकृत विक्रेताओं से ही खाद खरीदने की अपील की है। वहीं दूसरी तरफ किसान कल्याण और कृषि विकास विभाग ने किसानों को धान की सीधी बुआई यानी डीएसआर पद्धति अपनाने की सलाह दी है। विभाग के अनुसार इस तकनीक से पानी और श्रम दोनों की बचत होती है। समय पर बुआई होने से फसल का उत्पादन भी बढ़ता है। अतिवृष्टि और बाढ़ जैसी आपात स्थितियों से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने 24 घंटे कार्यरत कंट्रोल रूम स्थापित किया है। कलेक्ट्रेट भवन में संचालित इस कंट्रोल रूम में अधिकारियों और कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। किसी भी आपात स्थिति की सूचना तुरंत यहां दी जा सकती है। मैहर घराने की समृद्ध संगीत परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जिला प्रशासन ने मैहर मल्हार संगीत सभा की शुरुआत की। शासकीय संगीत महाविद्यालय में आयोजित पहले कार्यक्रम में युवा कलाकारों ने शास्त्रीय गायन, तबला, जुगलबंदी और कथक की प्रस्तुतियां दी। जिले में विश्व स्तनपान जागरूकता सप्ताह के तहत स्कूलों और विभिन्न संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वरिष्ठ डॉक्टर छात्राओं को बता रहे हैं कि मां का पहला गाढ़ा पीला दूध नवजात के लिए सबसे सुरक्षित और पौष्टिक आहार होता है। इससे बच्चे की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है और कई गंभीर बीमारियों से बचाव होता है। जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।

0: अभी आप सुन रहे थे जिले की चिट्ठी। इसमें आज आपने सुनी सतना जिले की चिट्ठी। आलेख लाल बहादुर तिवारी का था, वाचन था दीपा सिंह का, और इसका प्रसारण किया गया आकाशवाणी के भोपाल केंद्र से। ये आकाशवाणी
1: सागर आपकी सेवा में है। 10:05 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम फोन करें, लोकगीत सुनें।

0: जय शिखर भैया, हमारे तमाम श्रोता भैया बिन नाहरे बिल्कुल तैयार बैठे हैं अपनी पसंद की लोकगीत सुनवे।
1: बिल्कुल भैया, सुन नहीं कर रहे अपन तनक भी दे रहा
0: मनो के पहले। हमारे तमाम श्रोता भैया हरे जो ये कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं उनको कर रहे हैं खूबाई खूब स्वागत। कार्यक्रम फोन करें लोकगीत सुने में।
1: और भैया स्वीकार करो हमारी यानी जय शिखर की
0: और नीरज सोनी की
1: राम राम, राम। और ले थे नीरज भैया जो पहलो फोन। हेलो।
2: हेलो, नमस्कार सर।
1: नमस्कार भैया, फोन करें लोकगीत सुने में स्वागत है आपको।
2: सर हम बमोरी से बोल रहे हैं, जिला छतरपुर तहसील बक्सवाहा, राजू नामदेव बोल रहे हैं।
1: राजू भैया क्या कर रहे हो आप बक्सवाहा में?
2: सिलाई की दुकान खोले हैं सर, सिलाई करते हैं, कपड़े सिलते हैं।
1: अच्छा, और भैया कौन से कपड़ा ज्यादा सिलाते हो आप?
2: पैंट शर्ट ज्यादा बनाते हैं सर, कोट पैंट शर्ट वर्दी भी बनाते हैं।
1: तो भैया अब तो ब्याह शादी को सीजन थोड़ा सा कम होगा।
2: हाँ, तो अभी स्कूल की वजह से चल रही सर।
1: हाँ तो भैया अब हमें जा बताओ कि पानी आनी के हलचल कहाँ है होते?
2: सर पानी तो नहीं गिर रहा है। अरे भगवान से विनय कर रहे हैं कि बरस जाए थोड़ा पानी।
1: अच्छा हाँ भैया, जय कोशिश कर सकते हो। और इसके अलावा तो अपने हाथ में जा कोशिश है कि पर्यावरण को संरक्षण करें, पेड़ ना कटन दें और ऐसी काम ना करें जो उनसे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं।
2: सही बात है सर, पेड़ ना काटें, पेड़ बचाव करें।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो भैया अब हम आपसे पूछ रहे हैं एक अटका। अटका कह रहा है कि कारो है मनो कोयला नहीं, मीठो है मनो गुण नहीं।
2: जामुन तो नहीं है?
1: बिल्कुल सही कह रहे भैया।
2: हाँ जी,
1: कैसे बता दो भैया आपने?
2: जानते हैं।
1: चलो भैया बहुत ही अच्छी बात है। अब बता दो भैया लोकगीत कौन सा सुनने हैं आपको?
2: चंद्रभूषण पाठक का सुनना है सर।
1: कौन सा वालो?
2: वो कोई से भी सुनवा दो जो अच्छा लगे।
1: ठीक है भैया, सुन लो अपनी फरमाइश पे चंद्रभूषण पाठक को गाओ भाव जो लोकगीत।

0: झाग ही झाग सफाई पे दाग।
1: जी हाँ, तन्मन डिटर्जेंट पाउडर और साबुन, इससे मिलती है कपड़ों को गजब की धुलाई।
0: ये सीधे मैल पर करे वार, कपड़े चमके चमकदार।
1: तन्मन डिटर्जेंट पाउडर और साबुन, झाग ही झाग सफाई बेदाग।
2: हेलो
3: हेलो,
2: स्वागत कर रहे भैया, फोन करें लोग गीत सुने कार्यक्रम में आपको।
3: जी सर नमस्कार।
2: नमस्कार, अपनो परिचय हम तक पहुंचा दो।
3: सर मेरा नाम जितेंद्र चौधरी है।
2: जितेंद्र भैया तो, कहाँ से बोल रहे?
3: सर मैं ग्राम पोस्ट पटोरी तहसील बोहरीगंज जिला कटनी से बोल रहा हूँ।
2: तो जितेंद्र भैया सुनाओ, कैसी हो, क्या चल रहा है हाजिर में?
3: ठीक है सर, अभी तो हमारी पढ़ाई चल रही है विश्वविद्यालय से, राजनीति से एमए कर रहे।
2: चलो बहुत अच्छी बात है, पढ़ाई लिखाई से जुटे हो। अच्छा भैया एक बात बताओ, आकाशवाणी की कार्यक्रम तो तमाम सुनते ही कहानी।
3: जी
2: तो आप बताओ हमें, आपकी पढ़ाई लिखाई में हमारे आकाशवाणी के कार्यक्रमों से कहाँ कैसी मदद आपको मिलत है?
3: जी सर, हाँ सर, आकाशवाणी हम सुनते रहते हैं और मनोरंजन और समाचार भी हम सुनाते हैं आकाशवाणी सागर।
2: चलो भैया, माने तमाम प्रकार की जानकारी ले रहे हो, पढ़ाई लिखाई में चित्त लगाए हो।
3: जी
2: जितेंद्र भैया आपसे एक बात और हम पूछो चाह रहे हैं।
3: जी सर।
2: आप चूंकि पढ़ लिख रहे हो, नव युवा हो, तो हमारे और आपके अपने युवा साथियों से जो पढ़ रहे हैं उनसे शिक्षा प्रद संदेश देवो चाहत हो का?
3: जी, आकाशवाणी के माध्यम से यह संदेश है सभी नवयुवाओं को कि सभी लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी पढ़ाई करें और शिक्षित रहें, संगठित रहें, पर्यावरण की ओर जागरूक रहें, पर्यावरण जागरूकता को बढ़ाएं, पेड़ पौधों का संरक्षण करें।
2: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पर्यावरण संरक्षण खुले के युवाओं से आपने बहुत बेहतरीन निवेदन करूं। बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र भैया। अब जितेंद्र भैया अपने कार्यक्रम में एक अटका लेके आते हैं, आप और रखो अटका भी।
3: जी
2: मनो, आज को अटका बहुत सरल है, ध्यान से सुनियो, आपको जवाब आज ये है। अटका कह रहा है, कालो है मनो कोयला नहीं, मीठो है मनो गुड़ नहीं, करिया है और मीठी है, काली काली है। नहीं आ रहा हो?
3: सर नहीं।
2: चलो जितेंद्र भैया इतने प्रसन्न हैं आज आकाशवाणी से जुड़ के कि जवाब नहीं आओ, कोई बात नहीं। जितेंद्र भैया अपनी फरमाइश और हम तक पहुंचा दूं।
3: सर मेरी फरमाइश है, सर हमें सावन का कोई भी लोकगीत सुना दी।
2: तो आओ भैया आपकी फरमाइश पे सुनाते हैं जो बहुत ही प्यारा सो सावन गीत, कृष्ण गोपाल दुबे और संगी साथियों को गाओ भाओ। और भैया आकाशवाणी सागर से ऐसे ही जुड़े रहियो, कार्यक्रम सुनते रहियो। जितेंद्र भैया आप हमारे कार्यक्रम से जुड़े, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

0: झाग ही झाग सफाई पे दाग।
1: जी हाँ, तनमन डिटर्जेंट पाउडर और साबुन, इससे मिलती है कपड़ों को गजब की धुलाई।
0: ये सीधे मैल पर करे वार, कपड़े चमके चमकदार।
1: तनमन डिटर्जेंट पाउडर और साबुन, झाग ही झाग सफाई बेदाग।
2: हेलो।
3: हेलो सर, नमस्कार।
2: नमस्कार भैया,
3: आकाशवाणी सागर फोन करे, लोकगीत सुने।
2: बिल्कुल सही कह रहे हो भैया।
3: समय धान की रोपाई चल रही।
2: अच्छा, अपने किधर धान भैया अच्छी हो जाते, पानी मिल जाता धान के लाने?
3: जी सर, बोर और वगैरह से लगाते हैं। मैं महेश पटेल ही आपका नियमित श्रोता बोल रहा हूँ।
2: अच्छा महेश भैया, कहाँ पे है अपनी खेती?
3: अपनी खेती सर छतरपुर जिले में है।
2: अच्छा अच्छा,
3: ये चंदला लोड़ी के पास पड़ता है, यहाँ एक छोटा सा ग्राम है बगुली।
2: हाँ हाँ हाँ भैया, तो इतना पानी कैसे मिल जाता बोर से भैया के अपन धान भी लगा ले?
3: सर उसमें छोटी छोटी मेड़े बना दी जाती है खेत में।
2: हाँ हाँ,
3: और उसमें ट्रैक्टर द्वारा मचा के रोपा लगा दिया जाता है, इसके बाद पानी कम लगता है। कई प्रकार की धानों की नस्लें आती हैं सर।
2: हाँ हाँ हाँ,
3: जैसे गेहूं में पानी लगता है, इसी तरह का पानी उसमें भी।
2: तो भैया
3: इस वर्ष तो खाने वाला उपयोग किया है। अच्छा चावल होता है, सरबती की किस्म है।
2: अच्छा अच्छा अच्छा भैया, हमारे कहते के आकाशवाणी के कार्यक्रम किसान वाणी से कुछ फायदा मिला था आपको?
3: जी सर, उसमें बहुत अच्छी जानकारियां दी जाती हैं और हम लगभग पूरा उपयोग उसी का करते हैं। जैसे कि बताया जाता है कि जैविक खाद का उपयोग करें।
2: हाँ हाँ हाँ,
3: और ये जो उर्वरक आते हैं शासन द्वारा मिलते हैं, ये सब नुकसानदायक है सर।
2: जो रासायनिक है उनको कम इस्तेमाल करो जाए।
3: जी जी,
2: और जैविक कृषि की तरफ अगर अपन चल हैं तो वो फायदेमंद है।
3: जी सर।
2: तो भैया हम पूछ रहे हैं आपसे अटका।
3: जी सर पूछिए, अगर बनेगा तो बताएंगे सर।
2: कारो है मनो कोयला नहीं, मीठो है मनो गुड़ नहीं,

0: कारो है लेकिन
1: कोयला नहीं
0: जी, जामुन तो नहीं है।
1: बिल्कुल सही कह रहे भैया। अब बता दो भैया कि लोकगीत कौन सा सुनने?
0: सर शकुंतला राजपूत जी सुनवा दो सर।
1: अब हम आपको सुनवा रहे हैं शकुंतला राजपूत को गाओ भाव जो लोकगीत।
0: जी जी सर, नमस्कार।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: स्वागत कर रहे भैया आपको कार्यक्रम फोन करें लोग गीत सुने में।
1: जी सर,
0: अपनो परिचय हम तक पहुंचा दूं।
1: माधव पटेल जमुनिया।
0: माधव भैया की पहल कबे बात भई थी?
1: अबे नहीं भाई सर, पहली बार भाई है।
0: तो माधव भैया इतनो समय का लगा दो आकाशवाणी से जुड़वे में?
1: लगाते रहे थे सर फोन मंगा लगाते नहीं है।
0: बहुत बढ़िया, आप तमाम श्रोताओं को इतनो अपार प्रेम है कि आप लगातार जो है आकाशवाणी से जुड़े रहा थो, इसे थोड़ा समय लग जाते बारी आवे में। माधव भैया
1: हाँ?
0: सुनाओ कछु अपने बारे में, का चल रहो, का करत रहा थो?
1: अब सर जो है खेती किसानी को लगाए हैं, अब बासा को नहीं जाए जाए। सो अब फ्री बैठे हैं, अब यहाँ से में काम भी नहीं है सर।
0: माधव भैया कबो ये बात को विचार करो कि जा वर्षा अनियमित हो जा रही है, कबो बहुत ज्यादा गिर जाते, कबो जैसे ये बार टंगा पानी रुको है।
1: हाँ।
0: तो एक एक का कारण है कछु विचार करत कबो?
1: जी का है सर कि जंगल का जैसे अब तेल हैं जो वर्षा आती सर, अब वर्षा नहीं बाहु पाल जाए, हवा को दबाव नहीं बन पाए।
0: तो बताओ हम और आप मिल के कर का सकत है?
1: अपन सर जंगल के कम से कम पेड़ कम काटे हैं सर।
0: भैया जा तो एक बात हो गई कि पेड़ कम काटें, अगर जरूरत नहीं है तो बिल्कुल भी ना काटें, और कम से कम अपने जीवन में एक पेड़ लगाएं जरूर।
1: लगाते हैं सर।
0: हाँ, ऐसे नहीं लगाने हैं माधव भैया के अपन ने रोप दो लगा दो फ्री हो गए। जब तक वो पेड़ को अपन अपनी ऊंचाई के बराबर न ले आए, तब तक वो में खाद पानी जो जो चीजें जरूरी हैं वे देते रहे, वो की सुरक्षा भी बहुत जरूरी है। वो खो बेड़े ऐसो अपन तमाम चीजों से बिरगुआई से बेड़ देवे, या अपने गांव देहात में देसी तौर तरीकों से तार बंदी कर देवे, जब तक वो अपनी ऊंचाई से थोड़ा ऊपर न हो जाए तब तक अपन खो की देख रेख करने, बल्कि हम तो जाके हैं भैया वो की हमेशा देख रेख करने, फलदार वृक्ष लगाओ, फल भी पाओ और पर्यावरण स्वस्थ बनाओ। चलो हमें उम्मीद है माधव भैया के संगे हमारे तमाम श्रोता भैया हरे इसे निश्चित रूप से सीख ले हैं ये बात से। चलो माधव भैया अटका पूछ लें पहल।
1: जी सर पूछ।
0: कालो है मनो कोयला नहीं।
1: जी।
0: मीठो है मनो गुड़ नहीं।
1: कालो है मनो कोयला नहीं
0: है। हो मीठी है मनो गुड़ नहीं है। हाँ नहीं आ रहा हो?
1: नहीं आ रहा सर।
0: मजे बिल्कुल खुश रहो, मजे में रहो, सीजन चल ही रहो, मीठी मीठी जामुन भी खात रहो, आकाशवाणी के कार्यक्रम भी सुनत रहो। अब अपनी फरमाइश हम तक पहुंचा दूं।
1: चुन्नी लाल एक बार हमारे
0: बिल्कुल माधव भैया की फरमाइश पे चुन्नी लाल को गाओ भाव, जो बहुत ही प्यारो सो लोक गीत अपन सभी जने सुन रहे हैं। माधव भैया ऐसे ही जुड़े रहने आकाशवाणी सागर से, आपको फोन कार्यक्रम में प्राप्त भाव, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: मोरे मन के चरण लगे राजा खेलवन।

0: हेलो
1: आकाशवाणी सागर फोन करें रोगी सुने।
0: बिल्कुल भैया अपना नाम बता दो।
1: उत्तम सिंह बघेल ग्राम राजगढ़ तहसील करेरा जिला शिवपुरी मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ सर जी।
0: बताओ कि काम धाम का कर रहे हो करेरा में आप?
1: बकरी पालन और कोई भेड़ पालन का काम है सर।
0: बहुत ही अच्छी बात है भैया। और करेरा सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है भैया कि झांसी और शिवपुरी के बीच में पड़ता है और दतिया भी बराबर दूरी पड़ जाता है भैया। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस को कार्यालय होते। बारिश के क्या हाल चाल है भैया? बारिश कैसी हो रही?
1: सर बारिश नहीं हो रही बिल्कुल। हाँ बहुत ज्यादा गर्मी है, धूप है सर, अकेले बारिश नहीं हो रही।
0: हाँ भैया, तो भैया हमारा प्रसारण कैसे सुना थो आप?
1: अरे सर मोबाइल ऐप पे सुनते सर, बहुत अच्छा आता है।
0: भैया अब हम अटका भी पूछा था, जब भी पता है आपके लाने।
1: हाँ सर।
0: तो अटका कह रहे हो कि कारो है मनो कोयला नोई और मीठो है मनो गुड़ नोई।
1: कालो है
0: मनो कोयला नोई और मीठो है मनो गुड़ नहीं है।
1: सर वो तो नहीं है, वो क्या बोलते हैं, वो ये वो होता है, वो पानी में उगता है, वो
0: सिंगाड़ो।
1: सिंगाड़ो
0: नहीं मगर मीठो है।
1: अच्छा। और तो जैसे फल है क्या कुछ और?
0: फल ही है भैया।
1: तो जामुन तो नहीं है सर?
0: सही कह रहे हो भैया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब बता दो कि लोकगीत कौन सा सुनवा दे?
1: लोकगीत सुनवा दो सर, उर्मिला पांडे का सुना देना सर।
0: चलो ठीक है, सुन लो भैया अपनी फरमाइश पे उर्मिला पांडे को गाओ भाव जो लोकगीत।